आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं और ये सफर है भोर सुहानी का। समय हो गया है 5:33 और 10 सेकेंड। हम आज बात कर रहे हैं सत्य की। वैसे तो सत्य और असत्य में बहुत सारे भेद हैं, पर देखा जाए तो सत्य अनंत है, लेकिन झूठ की एक सीमा होती है जिसके पास पहुंचने पर वो बेनकाब हो जाता है। सत्य हो सकता है तकलीफ देह हो, पर असत्य पहले सुंदर होता है और बाद में उससे तकलीफ होती है।

सत्य को तो हम समझ रहे हैं, पर असत्य क्या है? यानी जो सत्य नहीं है तो क्या वो सारा असत्य है? जैसे कि उजाले के अलावा सब अंधेरा बचता है, तो ऐसे ही सत्य के अलावा सब असत्य बचता है। असत्य को पहचानना आसान है, क्योंकि उसके साथ कितने ही अच्छे से सफर को शुरू किया जाए, कितनी ही चमक के साथ उसके साथ रहा जाए, आप उसके साथ चलते हुए बहुत जल्दी थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे और फिर आप सच की तलाश में निकल पड़ेंगे। सच मुश्किल जरूर है, सच कहना मुश्किल है, पर हम सब सच सुनना चाहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026 सुबह के 5:53 36 सेकंड हो चुके हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:10 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण पूनम आहूजा के साथ। 6:44 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस पाठ। आज सुनिए बालकांड भाग 74। सुबह 7:10 पर होगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। 8:45 पर सुनिए कार्यक्रम म्यूजिकल तिलकी। उसके बाद यही कार्यक्रम 9:10 पर सुनिए, आपके साथ होंगी नीतू शर्मा। इसी कार्यक्रम में आज एक खास जानकारी मिलेगी हीट स्ट्रोक के लक्षण और बचाव विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर और हेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से।

सुबह 10:30 पर सुनिए रिक्वेस्ट आधारित शो दिल का मेल बॉक्स, सुबह 11:10 पर नीतू के साथ सैर करिए अजमेर की, जानिए अजमेर की संस्कृति, अजमेर की सभ्यता को, कार्यक्रम तस्वीर के माध्यम से। दोपहर 12:10 पर सुनिए महिला और पारिवारिक कार्यक्रम घर आंगन, साथ होंगे आज रजनी मेहंदीरत्ता। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में बात होगी फिल्मकार महबूब खान की। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। आज का विषय है प्राकृतिक और जैविक खेती द्वारा उर्वरक लागत में कमी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार

0: अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो चला है 6:12 और ठीक 2 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो सुप्रभात यानी एक नई शुरुआत, और वो भी शुभ शुरुआत। और वो शुभ शुरुआत तब होती है जब हम सुबह सुबह उठें और अंगड़ाई लें और सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आए वो आए कि आज का दिन कितना अच्छा बीतने वाला है। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें लगती हैं, क्योंकि जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कोई ना कोई चिंता आ जाती है, कोई ना कोई बात आ जाती है जो कल हुई थी, या आज कुछ ऐसा जो हमें परेशान करने वाला है। सबसे पहले हमारी शुरुआत ऐसी ही होती है, चाहे आप सोच के देखिए। तो जब ऐसी शुरुआत हो तो क्या हम उसे सुप्रभात कह सकते हैं? नहीं ना। अब इसे सुप्रभात बनाना हमारे अपने हाथ में होता है, और वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, और उसके बाद में अगर आप थोड़ी देर अपने साथ बैठकर अपने विचारों को खुद ही सोचें, वो भी बिना ये सोचे कि उनके बारे में करना क्या है, सिर्फ उन्हें गहराई से सोचें और समझें कि क्यों बार बार ये विचार आते हैं, क्यों परेशान करते हैं। और ये काम कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक साधना है और इसमें बहुत सारी स्थिरता चाहिए। लेकिन स्थिरता के लिए आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। पर जब आप ये स्थिरता पा पाएंगे, यानी ऐसे बैठकर अपने अंदर के विचार की गहराइयों में जा सकेंगे, तो फिर जो संतुष्टि होगी उसकी तो बात ही क्या। और हां, क्यों ऐसा जरूरी है कि हम अपने आप को ऐसे विचारों में, उनकी गहराइयों में ले जाएं? क्यों अपने आप को समझें, जानें? क्यों बार बार हर धार्मिक ग्रंथ ही कहता है कि ध्यान करना सीखें? ठीक है, संतुष्टि मिलती है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या हमें ऐसा मिलता है जो जीवन को बेहतर बना सके? सब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे भजन के साथ।

जी हाँ, तो बात ये हो रही थी कि सुबह सुबह हम जब उठते हैं और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं या सिमरन करते हैं या जो भी सुबह हम समय निकालें जिसमें हम अपने आप से जुड़ें, उससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो फ़ायदा हमने बात की यही होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं क्योंकि मानसिक शांति मिलती है और सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाती है, बिना शिकायतों की होती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें सुबह सुबह अपने लिए समय निकालने की, तो उसमें हम अपने विचारों का गहरा विश्लेषण कर पाते हैं और जितना विश्लेषण ये गहरा होता है उतनी ही मानसिक स्पष्टता मिलती है, तनाव और चिंता कम होती है, हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और जितना समझते हैं उतना हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और जितना नियंत्रण करते हैं उतना हम अपने जीवन में अपने मूड के हिसाब से चलना बंद कर देते हैं। अब यही होता है ना कि बहुत सारे काम हमें पता है करने हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि क्यों किया जाए, या ये काम करने का अभी मूड नहीं है, या जरूरी तो है लेकिन बाद में कर लेंगे, और फिर जानते बूझते भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। बेशक वो खाने की बात हो, आपको पता है कि वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मूड है तो कुछ भी हमने ऐसे ही खा लिया, या किसी से कुछ कहने की बात हो या कहीं जाने की बात हो, हर चीज हमारे मूड पे डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन जब हम सुबह सुबह अपने विचारों का गहरा विश्लेषण करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए ये सोचना शुरू करते हैं कि क्या क्या उपाय किए जाएं। तो बस ये उपाय जब करते हैं तो जीवन में जो जो जरूरी है ना उसे करने पर हम ध्यान देना शुरू करते हैं, बिना ये सोचे कि आज मूड नहीं है या फिर कर लेंगे। तो एक तो ये फायदा हुआ सुबह सुबह अपने साथ बैठने का, मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का या अपने विचारों को समझने का। और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे लेकिन पहले ये शब्द।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

6:29 और ठीक 15 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और हम बात कर रहे थे कि सुबह सुबह जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ इसके बारे में बताते हैं, तो ऐसा क्या है जो इससे हमें मिलता है या क्यों हम करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल एक ये प्रोसेस है या इतनी देर बैठे रहना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमें इंस्पायर करे, प्रेरणा दे, जिसकी वजह से हम करना चाहें। तो हमें प्रेरणा ये बात देती है कि जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं ध्यान के माध्यम से, तो उससे हमें मानसिक स्पष्टता मिलती है, यानी मेंटल क्लैरिटी आती है। हमारा मन पुरानी यादों और भविष्य की चिंताओं में हमेशा भरा रहता है, और ये शोर जो इन चिंताओं का होता है, पुरानी यादों का होता है, ये बार बार हमारे दिमाग को परेशान करता है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने विचारों को गहराई से देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो ये समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। फिर ये समझ में आता है कि कौन से विचार उपयोगी हैं। फिर हम ये निर्णय ले पाते हैं कि ये विचार हमें और अच्छी तरह से सोचने हैं, या इन विचारों को अपने साथ रखना है और जो व्यर्थ हैं उनको हटा देना है। बस इतना करते ही इतनी ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आ जाती है कि हम वास्तव में जीवन के मर्म को समझ पाते हैं और वो कर पाते हैं जो जरूरी है। और बहुत सारी वो चीजें जिनके पीछे हम अभी तक भाग रहे थे या भाग रहे हैं, उनके लिए रुककर सोचने का समय अपने लिए निकाल पाते हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि हम सुबह सुबह जब अपने साथ बैठते हैं और अपने आप से बात करते हैं, जिसका पूरे दिन में हमें समय नहीं मिलता है, तो क्या क्या हमें मिल जाता है उससे। देखिए, एक तो मानसिक स्पष्टता आती है, जिसके हम बात कर रहे थे। दूसरा, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी ये समझ सकते हैं कि ये जो भावनाएं हैं ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। और नियंत्रण करने का मतलब कि आप अपने मूड के हिसाब से काम करना बंद कर देते हैं और जो जरूरी होता है उसे करने लगते हैं। एक और चीज जो होती है वो होती है कि हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे अंदर भरे रहते हैं और ये जो नकारात्मकता है ये हमें जिंदगी की अच्छी चीजों को देखने नहीं देती। इसीलिए जब हम अपने विचारों के साक्षी बनते हैं ध्यान के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से, तो हमें पता लगता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी तो है जो बहुत अच्छा है। क्यों हम सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही देख रहे हैं? क्यों हमें सिर्फ वो थोड़ी सी चीजें दिखाई देती हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन जो अच्छा है उसे हम देखना भूल ही जाते हैं? और जब ऐसा हम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप, हम और मजबूत होते जाते हैं, जीवन से जुड़ते जाते हैं और अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए माफ करना भी सीख जाते हैं। और एक्सेप्टेंस यानी उन चीजों को अपनाने की क्षमता, वो भी बढ़ जाती है।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगुली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, और आइए अब से कुछ ही देर में सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुम् ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यं अभवत्।

0: रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एडुटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीये सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
5: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन

7:10 और ठीक 58 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम यानी गोल्ड सुप्रभात। गोल्ड सुप्रभात यानी ये जो सुनहरी किरणें होती हैं ना सूर्य की सुबह सुबह, ये मन को इतना पॉजिटिव कर देती हैं, सकारात्मक करती हैं कि अपने आप ही सब कुछ गोल्डन नजर आने लगता है, यानी बहुत अच्छा लगता है। और उसे और खूबसूरत बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि सुबह उठकर हम उन तीन चीजों के लिए धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें, कृतज्ञता करें जो हमारे पास है। बस इतना सा करने से भी पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो आप ये गाना सुनिए और साथ ही साथ सोचिए क्या ऐसी तीन चीजें हैं जिनके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहेंगे सुबह सुबह उठ के, या प्रकृति को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सोचिए और फिर इस गाने के बाद बहुत सारी बातें आपसे और करनी है। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से, और साथ ही शर्मीली फिल्म के इस गाने के साथ।

वैसे गाना सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि मौसम भी सुबह सुबह इतना खुशनुमा होता है कि मूड अपने आप अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर ये भी सोच रही थी कि मौसमों की बातों तक गुफ्तगु रही अपनी, मौसमों की बातों तक गुफ्तगु रही अपनी, मैंने कब कही अपनी, तुमने कब सुनी अपनी। तो अक्सर हम मौसमों तक ही अपने आप को

सीमित कर लेते हैं या मौसम की बात तक ही हमारी बात रह जाती है, लेकिन उससे भी कहीं आगे बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम या तो ये सोचते हैं कि हमारी बात समझेगा नहीं या सोचते हैं कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए और करते नहीं है। लेकिन फिलहाल मौसम की ही बात करें तो आज सुबह सूर्य देवता आ गए थे 5:25 के आसपास और जाएंगे 7:12 के आसपास। अरे भाई बड़ी लंबी ड्यूटी है आज तो, और इतनी लंबी ड्यूटी में हमें इतना सारा समय मिलने वाला है कि हम अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। वैसे बात करें मौसम की, सूर्य देवता के बारे में तो आपको बता ही दिया, लेकिन मौसम बताएं तो 40 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अब ऐसे में अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो सनराइज और सनसेट का टाइम आपको मौसम से पहले इसीलिए बताया क्योंकि इतना लंबा जब दिन होता है ना, तो आप प्लानिंग जो भी करें उसमें बाहर निकलने का काम थोड़ा सा ऐसे समय पर करें जब बहुत तेज बहुत कड़ाके की धूप ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें कि हमें लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, और ऐसे में अपने आप को बचा के रखना बहुत जरूरी है। कैसे बचाएंगे क्या करेंगे आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम भी बताएंगे। फिलहाल एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये जो गाना है ये हमारी आकाशवाणी के लिए, इसे सुनते हैं।

7:22 और ठीक 17 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है गोल्ड सुप्रभात। गोल्ड सुप्रभात में हम बात कर रहे थे कि अपने आप को ठीक रखना जरूरी है। हीट स्ट्रोक या लू जो है वो एक गंभीर स्थिति है जिससे बचने के लिए हम हाइड्रेटेड रह सकते हैं, यानी पानी जरूर पिए। प्यास ना लगे तो भी नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, यानी नींबू पानी पिए या छाछ या नारियल पानी या आम पन्ना, ये सब भी आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। और जो हम ये चाय कॉफी या ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स लेते हैं ना, इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। बात हो कपड़ों की तो ढीले ढाले और हल्के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहन सकते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। धूप में जब निकलते हैं तो सनग्लासेस आप लगा सकते हैं। और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप बहुत तेज होती है, ऐसे में बाहर जाने से आप बच सकते हैं। और अगर बाहर जाना जरूरी ही है तो बीच बीच में आप ठंडी या छायादार जगह पर आराम कर लीजिए। और घर में अगर आप हैं तो खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगाकर रखें ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर ना आए। और हाँ, अगर बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी से निकलते हैं तो पार्क की गई गाड़ी में किसी को भी, जैसे मान लीजिए आप किसी पालतू जानवर को लेकर जाते हैं या बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, तो वो मत छोड़िए क्योंकि तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा खाने की बात करें तो भारी या ऑयली या बासी भोजन है वो मत लीजिए, उसके बजाय आप हल्का सुपाच्य भोजन ले सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अपने आप को ठीक रखें। और डॉक्टर की सलाह आपको तब लेनी है जब आपको लगे कि आपका शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या सिरदर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसी स्थिति हो गई है या त्वचा लाल हो रही है, गर्म हो रही है, सूख रही है या फिर आवाज लड़खड़ा रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इस समय हमें डॉक्टरी उपचार की जरूरत है। तो प्लीज इस गर्मी में अपना बहुत ख्याल रखिए, आप ठीक रहेंगे तो ही तो प्रोग्राम भी सुनेंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड और यह है गोल्ड सुप्रभात, जिसमें हम बात कर रहे थे आपकी ही अपनी, ताकि आप अपने दिन को और बेहतर बना सकें। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं, तो सोचिए सुबह सुबह अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे ही बनते जाएंगे, यानी सकारात्मकता हमारे अंदर घर करती जाएगी। और ये सकारात्मकता जरूरी है ताकि हम हर चैलेंज का, हर चुनौती का सामना आराम से कर सकें। तो बस उसके लिए अपने आप को हर रोज तैयार करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तैयार किया और वो महीने भर चलता रहेगा, नहीं। हर रोज सुबह उठेंगे और उठकर अपने आप से कहेंगे कि आज का दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है, आज जो जो चुनौतियां मेरी जीवन की हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से निभाने वाला हूं। बस इतना अपने आप से कहेंगे तो अंदर से जो स्ट्रेंथ आएगी ना, वो कहां से आएगी, कैसे आएगी, आपको भी पता नहीं लगेगा। फिलहाल आपको याद दिला दें कि अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड को सुनते रहिएगा।

0: नमस्कार, सुप्रभात। सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये नए विचारों, नई उम्मीदों और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भी साथ लेकर आता है। हर उगती सुबह हमें ये भरोसा दिलाती है कि हर दिन अपने भीतर कुछ नया और बेहतर करने की संभावना छुपाए होता है। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं और नई उमंगों के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार वैष्णवी एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी वेलकम यू ऑल। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे विथ मी शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी। वी आर वेरी थ्रिल्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम विथ अ ब्लेंड ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म and well, yes, we will first give you the latest national international news and then metro city updates follow, and then today we'll also explore historical information related to today. Today it's 28th of May 2026. without any further delay, let's get started with the headlines. Vaishnavi
0: ji, bilkul। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometer of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling.
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है।
1: ईद उल जुहा, ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ सैक्रीफाइस, इज बींग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। द अर्ली ओकेजन ऑनर्स प्रॉफिट इब्राहिम्स एब्सोल्यूट फेथ एंड इज मार्क्ड बाय द रिचुअल ऑफ कुर्बानी। President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid-ul-Zuha. In her message, the President said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. She further urged the citizens to strengthen their resolve to promote love and harmony in the society.
0: Shagun, vibhinn rajyon se Eid manaye jane ki khabar mil rahi hai aur hamare samvaddata ne bataya hai ki Uttar Pradesh mein prashasan ne Bakri Eid ke sucharu aayojan ke liye vyapak vyavastha ki hai।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर टू द सिक्किम पुलिस एट द पलजोर स्टेडियम इन गैंगटॉक टुडे। सिक्किम विल बिकम द 15th स्टेट ऑफ द कंट्री एंड थर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू रिसीव दिस अवार्ड। द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इज द हाईएस्ट सेरेमोनियल ऑनर अवार्डेड टू अ पुलिस फोर्स इन द कंट्री इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस, अनवेवरिंग डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टू द नेशन।
0: युवा मामले विभाग और माय भारत आज से भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक दिवसीय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। इसके साथ ही कल से दो दिवसीय चिंतन शिविर पूर्वोत्तर का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, प्रमाण आधारित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और समुदाय आधारित हस्तक्षेप मॉडलों को प्रस्तुत करना है।
1: Now, let us talk about hypertension. Well, around 30 crore people in the country are living with hypertension, and with the prevalence rate of nearly 25% in rural areas, 33% in urban areas. Talking to Akashwani News, cardiologist at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Professor Ambuj Roy said that high blood pressure

0: or hypertension. This is the leading cause of mortality in India. And this accounts for nearly 16 lakh deaths every year. Let's hear what he has to say.
1: Almost 16% of deaths in India are attributed to hypertension, which is almost 16 lakh people dying of hypertension every year. So we need to have the strategy of screen, treat and control so that we can put maximum number of people on blood pressure medicines. And these medicines are very cheap, widely available in the public health system. So we need to, only thing we need to do is implement it better so that most people can get benefit of this.
0: आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। श्रोताओ, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। लोकतांत्रिक मूल्यों, वैचारिक संवाद और जनभागीदारी को समर्पित दिल्ली विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना का आज दिल्ली विधानसभा सदन में लोकार्पण किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली विधानसभा ने बताया कि ये पत्रिका विधानसभा की गतिविधियों, महत्वपूर्ण चर्चाओं, विधायक विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। वहीं मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों का और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। वहीं रोहिणी ईस्ट का नाम रोहिणी मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका ककरोला होगा। इसके अलावा बेगमपुर रोहिणी में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल खेल परिसर रखा जाएगा। इस बीच दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची के प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नाउ वैष्णवी, लेट्स हेड टू चेन्नई। सो द मद्रास हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स इन तमिलनाडु ड्यूरिंग बकरीद एंड ऑन ऑल द अदर डेज। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस जी एस स्वामीनाथन एंड जस्टिस वी लक्ष्मी नारायणन इश्यूड द बैन ऑर्डर। द कोर्ट सेड एनिमल सैक्रिफाइस कैन ओनली टेक प्लेस इन डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउसेस अंडर द तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट 1998। So the judges directed the state government and police officials to strictly enforce the order and prevent any violations. The case has been posted for compliance tomorrow. Now, where are we heading now, Vaishnavi? मुंबई की ओर रुख करते हैं और मुंबई में इस समय बड़े स्तर पर सड़कों को कंक्रीट से मजबूत बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बृहन मुंबई नगर निगम ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले वर्ष तक ये सभी परियोजनाएं पूरी होने के बाद शहर में गड्ढों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले सभी सड़क निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं और 1 जून के बाद कोई भी परियोजना अधूरी न रहे।
4: Well now, focusing on Bengaluru, Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh said artificial intelligence and digital technologies, they will play a major role in solving future challenges. These include climate change, urbanization, groundwater depletion, infrastructure stress as well. So she was speaking at the National AI and Digital Water Summit in Bengaluru, and she said Karnataka should become a national leader in AI-based urban water management. She also highlighted the importance of real-time monitoring there, predictive analytics and data-driven governance for better public services. She said Karnataka has already set up an AI center for excellence and introduced policies supporting digital governance systems. So this was the update from Bengaluru.
0: और बेंगलुरु से चलते हैं कलकत्ता की ओर। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 8 जून को केंद्र सरकार के साथ समझौता किया जाएगा, साथ ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं।
4: नाउ वी आर हेडिंग टू हैदराबाद। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज रिटन टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सीकिंग डिस्कशंस ऑन द तुमिदीहट्टी बैराज प्रोजेक्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सप्लाइंग वाटर टू नॉर्थ तेलंगाना। सो द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर Pranahita Chevalle Sujala Sravanti project is expected to provide water to the districts of Nizamabad, Karim Nagar and Medak. In 2016, actually, Maharashtra had agreed to build the barrage at a height of 148 meters. However, Telangana recently reviewed the plan after irrigation experts said that the current height may not be enough to meet the region's water needs. The Chief Minister has requested fresh talks with Maharashtra to slightly increase the barrage height there. He said this would allow water to flow to Telangana through gravity, making the project more efficient and reducing costs. So these were the updates from our metro cities.
0: और अब बात आज के मौसम की। राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आज बारिश के साथ तूफान आने की संभावना है। और बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
4: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। मिनिमम टेम्परेचर वॉज अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्री।
0: वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
4: Bengaluru is expected to have partly cloudy sky again with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was around 21 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees Celsius.
0: वहीं कोलकाता में तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाली बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
4: इफ वी टॉक अबाउट हैदराबाद, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विथ वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स हियर एज वेल। द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस इन हैदराबाद।
0: जी बिल्कुल। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं, अब समय है इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों को पलटने का जिन्होंने अपने दौर में दुनिया की राजनीति, न्याय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा दी। शगुन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इतिहास के जगत में, इतिहास पर जाएं, इससे पहले हम बात करेंगे कि आज के दिन की विशेषता के बारे में, आज क्या खास है।
4: वेल, टुडे इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। Well, today is 28th of May, and this was actually, diving into the history of this day, this was established in 1987, and it mobilizes activists, also health organizations, to demand equal access to comprehensive health care and as well as bodily autonomy for all the women. So this day, it serves as a global reminder to prioritize so many things: women's physical, reproductive, mental well-being while also driving concrete policy changes rather than just spreading awareness. Action
0: जी बिल्कुल. और अगर हम महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन और हेल्थ सेंटर्स के जरिए देश भर में लाखों महिलाओं के ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त और समय पर स्क्रीनिंग की जा रही है.
4: एग्जैक्टली मैसिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स वी शुड से द सर्वाइकल कैंसर एंड फ्री स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट

0: And these women, they range from rural and urban sectors. Also, there is this nationwide HPV campaign. In February 2026, India took a massive preventive leap by rolling out a major nationwide HPV vaccination drive, and this targeted over 1 crore girls to radically bring down cervical cancer numbers. How great is that?
1: जी बिल्कुल. और संस्थागत प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के चलते भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है.
0: Well, there is also focus on nutritional safety along with that. Well, this actually includes expanding structural support via digitized Anganwadi ecosystems, and this has drastically scaled up iron and nutritional distribution to combat chronic anemia in adolescent girls and pregnant mothers as well. We were telling you about the International Day of Action for Women's Health, which is being observed today. Now, we'll take you back in time. In the year 1892, renowned British naturalist John Muir, alongside a group of conservationists, established the Sierra Club in San Francisco, laying the foundation for the modern environmental conservation movement.
1: वहीं 1936 में आज ही के दिन प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने अपना ऐतिहासिक शोध पत्र ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स प्रस्तुत किया, जिसने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की सैद्धांतिक नींव रखी थी.
0: In 1937, the German automobile manufacturer Volkswagen was officially founded in Berlin, and this was originally tasked with creating an affordable car for the general public, or in other words, the people's car.
1: 1952 में ग्रीस में महिलाओं को कानूनी रूप से मतदान करने और चुनाव में खड़े होने का समान अधिकार प्रदान किया गया, जो यूरोपीय महिला अधिकार आंदोलन का एक ऐतिहासिक पड़ाव था.
0: In 1961, British lawyer Peter Benenson published the article The Forgotten Prisoners in several newspapers. This marked the official founding of the influential human rights organization Amnesty International.
1: वहीं 1999 में आज ही के दिन इटली के मिलान शहर में पूरे 22 वर्षों के जटिल जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य के बाद लियोनार्डो दा विंची का कालजी उत्कृष्ट कृति द लास्ट सफर को फिर से आम जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया गया था.
0: In 2003, the world's first ever successfully cloned horse, a half-linger filly, which was named Promethea. This was born in Italy.
1: और श्रोताओं, इतिहास के इन महत्वपूर्ण पड़ावों के बाद अब बात उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिन्होंने अपने कार्य, विचार और उपलब्धियों से समाज और देश पर अमिट छाप छोड़ी और जिनकी जयंती या पुण्यतिथि आज के दिन से जुड़ी है. तो पुण्यतिथि में सबसे पहला नाम है विजय सिंह पथिक का. राजस्थान की धरती पर स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी सेनानियों में विजय सिंह पथिक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है. वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली पत्रकार और समाज सुधारक भी थे. बिजौलिया किसान आंदोलन को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने किसानों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रेरणा दी. उन्होंने अंग्रेजी शासन और रियायतों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और अपने लेखन व भाषणों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को मजबूत किया.
0: टुडे लिसनर्स, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग भगवती चरण बोरा. वेल, ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, ऑल्सो a key member of the Hindustan Socialist Republican Association, so a close associate of Bhagat Singh. He co-authored The Philosophy of the Bomb, Justifying Revolutionary Violence. Well, his legacy remains a symbol of fearless commitment to India's independence.
1: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने अपने विचारों, लेखनी और क्रांतिकारी सोच से युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई, वे नाम है वीर सावरकर. 1883 में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि, लेखक और ओजस्वी वक्ता थे. उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और देश की आजादी के लिए कई कठिन यातनाएं झेली. उन्हें अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल यानी काला पानी में भी लंबे समय तक कैद रखा गया. वीर सावरकर ने इतिहास, राष्ट्रवाद और समाज सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे. उनकी चर्चित रचनाओं में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदुत्व और माझी जनठेव विशेष रूप से उल्लेखनीय है. अपने विचारों और लेखन के कारण वे भारतीय इतिहास और राजनीति में आज भी एक चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं.
0: लिसनर्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग के सच्चिदानंद, आर्ग्युएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट राइटिंग इन मलयालम टुडे, एंड वेल रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज क्रिएटिव जर्नी.

तिथि है भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले महान निर्माता निर्देशक में महबूब खान की। महबूब खान ने भारतीय फिल्मों को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें समाज और भावनाओं से जोड़ने का काम किया। उनकी फिल्म मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। वे बड़े कैनवास पर मानवीय संघर्ष और भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए जाने जाते थे। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें आज भी बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। और अब आइए आपको सुनाते हैं महबूब खान की फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत।

0: Well, Walker's fluid phrasing, warm tone and showmanship, it actually directly influenced legends like, we know, B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix as well, cementing his role as one of the architects of modern blues and rock.
1: हास्य और व्यंग्य को बेहद सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास हिंदी साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी रचनाओं में हास्य के साथ साथ समाज की गहरी सच्चाइयां भी देखने को मिलती थी। वे मंच संचालन और कवि सम्मेलन की दुनिया में भी बेहद लोकप्रिय रहे। साहित्य और हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: Today, it's also another musician's birthday. So, John Cameron Fogerty, actually. Together with Dirk Clifford, his brother Tom Fogerty, he founded the Swamp Rock Band, which is Creedence Clearwater Revival, for which he was the lead singer, lead guitarist, and created so many great songs, one of which you're actually listening in the background. This is Green River.

0: So he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. This happened in the year 1993, and the Creedence Clearwater Revival had 9 top 10 singles, 8 gold albums between 1968-1972.
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में मधुरता और साधना का एक बेहद सम्मानित नाम है डीवी पुलस्कर। 1921 में जन्मे डीवी पुलस्कर बहुत कम उम्र में ही शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। वे प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के पुत्र थे और उन्होंने अपने गायन में भक्ति, शास्त्रीयता और भावनाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जिसने शास्त्रीय संगीत को आम श्रोताओं के बीच भी लोकप्रिय बनाया। भले ही उनका जीवन बहुत छोटा रहा, लेकिन भारतीय संगीत पर उनकी छाप आज भी गहराई से महसूस की जाती है।
0: ग्रेट इम्पैक्ट
1: जी, बिल्कुल। और श्रोताओं को अब सुनाते हैं डीवी पलुस्कर के उनकी एक मधुर आवाज में एक मनमोहक भजन।

0: Wow, this is such a beautiful creation, right? Overall composition is so beautiful.
1: जी बिल्कुल. और श्रोताओं, इसी खूबसूरत भजन के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही. अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
0: वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी ऑल्सो होप दैट यू हैव अ ग्रेट डे अहेड.
1: नमस्कार.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
7: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
5: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने

0: के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करे। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमरीका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
6: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Badwan Melbourne Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways,

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन अल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वह फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवे, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्यूनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निजाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर अपनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराये का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वह जराइम और मनशियात की स्मगलिंग के जराये, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा न हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदामात के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेटवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा 3 लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और सोला और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रूपये मुख्तस किए गए हैं। इतलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबिना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वज़ी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार खुद को वक्फ करने ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार मुल्क के शहरियों को खासतौर पर माली तौर पर कमजोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने अवाम से मआशरे में मोहब्बत और इत्तेफाक को फरोग देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशउसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोग नजदीकी मस्जिद में ईद उल अजहा की खसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीजा कुर्बानी नमाज के बाद अदा

0: किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू न होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी न होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी जिला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। डीजीपी राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमत, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। एसएसपी सतह के अफसर की क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूबा के मुकदस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोदगलियाना से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात अवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोजा प्रोग्राम में ज़राअत और मुतालिक शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौरखौस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार ज़राअत, पैदावार में इजाफा, आबोहवा में लचक है, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और किसानों की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज करते हुए आने वाले खरीफ सीजन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर खौस किया जाएगा। वजारत ने मजीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारों, आईसीएआर, ज़रई इदारों और दीगर मुतालिका फरीकों को खरीफ सीजन के लिए मरबूत कार्रवाई और कलीदी तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि मरकजी और शमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आज शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शमाल मशरकी भारत, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज से बहुत तेज बारिश की भी पेशगोई की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भारत बांग्लादेश सरहद पर चौकियां बनाने और खारदार बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे के कयाम के लिए 142.79 एकड़ आराजी बीएसएफ के हवाले कर दी है। यह हवालगी बीजेपी हुकूमत के इस फैसले का हिस्सा है जो 11 मई को काबीना की पहली मीटिंग में किया गया था, जिसमें सरहद पर बाड़ लगाने और मुतालिका बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए 45 दिन के अंदर अंदर 600 एकड़ जमीन की मुंतकली की गई थी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कोएम्ट एडुटेक को इम्तहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने कहा कि इल्जामात गलत, गुमराहकुन और हकायक पर मबनी नहीं हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डीगो केश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रागनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजशाह से पीछे हैं जो 7.5 पॉइंट्स के साथ

8:45 और ठीक 55 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी यानी बहुत सारा म्यूजिक और बहुत सारी बातें। अब बातें हमारे और आपके शुरू हो जाती हैं हमारे बचपन से ही, क्योंकि जब छोटे होते ना तभी बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं और ऐसा लगता है कि हर एक बात का एक जवाब हमें मिल जाए। अब जवाब ढूंढने में कई बार हम अपने आप भी कोशिश करते हैं, कई बार गिरते हैं संभलते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी से पूछ भी लेते हैं, लेकिन जवाब हर चीज का चाहिए होता है। आप जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं यानी जब हम छोटे थे तो एक दिन में लगभग 200 सवाल पूछते थे और आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हम उन सवालों को दरकिनार करके बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में आती भी हैं लेकिन फिर लगता है कि क्या ही पूछें, क्यों पूछें, और छूट जाती हैं। तो ऐसे ही सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं वो आप नोट कीजिए, लिखिए, ताकि जब भी समय मिले ना उनके आंसर आप ढूंढें। फिलहाल ये सारी ज्ञान की बातें तो बहुत हुई लेकिन एक प्यारा सा गाना आपका इंतजार कर रहा है। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से और साथ ही तेरे मेरे सपने फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है।

0: नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 के, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड।
1: मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आठ बजकर 56 मिनट और ठीक 15 सेकंड हो चले हैं और बात हो रही थी सुबह की खूबसूरती की और बचपन से वो शुरुआत की। वैसे सुबह को ना हम बचपन से कंपेयर भी करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे दिन के प्रहर बढ़ते जाते हैं, लेकिन आजकल की सुबह की बात करें तो थोड़ी अलसाई सी है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो हमें लगता है कि हम भी आराम से सोएंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर हम बच्चों को समझाएं, खुद को समझाएं कि ये जो टाइम होता है ना 1-1.5 महीने का, ये आराम का नहीं होता बल्कि कुछ नया सीखने का होता है, खुद को तरोताजा करने का होता है। तो बच्चों के साथ साथ आप भी तो कुछ नया सीख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बेशक वो म्यूजिक हो या फिर डांस हो या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए आपको समय नहीं मिलता। पेंटिंग हो सकती है या कंप्यूटर हो सकता है या कोई खेल हो सकता है, कोई भी ऐसा शौक जो आप पूरा करना चाहें, तो उसके लिए एक उपयुक्त समय है आपके बच्चों के लिए, उसे कीजिए ताकि बच्चों के जो बहुत सारे सवाल है ना जो उनके मन में बैठे हुए हैं और पूछ नहीं पा रहे हैं या जो उनके लिए वेंट आउट नहीं मिल रहा है, उसका वेंट आउट उन्हें आराम से मिल जाए और जब वो 1 महीने बाद जाएं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ जाएं।

जी हाँ, हवा चले कैसे ये तो आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन जानने की कोशिश कर सकते हैं। छुट्टियां इसलिए तो हैं कि कुछ कुछ नया जाने। फिलहाल आप जानिए देश और दुनिया का हाल, यानी सुनिए समाचार। पूनम चलती है, पर आप कहीं मत जाइएगा। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और समाचार के बाद नीतू होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल्ली के सफर आगे बढ़ाने के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद आखिरकार केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुपुरा में के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। रहीम को एक 15 वर्षीय विकलांग लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 196 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, include waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system or PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
5: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
6: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
3: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometer of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said, "Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also noteworthy." Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Eid ul-Adha. In a social media post, Mr. Modi hoped that the occasion will deepen the spirit of brotherhood and happiness in the society. He also prayed for everyone's success and good health. India has sent emergency pharmaceutical supplies to support efforts to contain the Ebola outbreak in Congo, Africa Centers for Disease Control and Prevention said. In a social media post, Ethiopia-headquartered Africa CDC

100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। त्योहार जो होते हैं ना, वो हमसे कहते हैं कि कभी तो साथ बैठिए, कभी तो मन की गांठें खोलिए और अपनी खुशियों को सबके साथ बांटिए। जब हम अपनी नेमतों को जरूरतमंदों के साथ बांटते हैं ना, तो ऊपर वाला भी खुश होता है, और ऊपर वाला खुश है तो फिर सभी खुश हैं।

0: आकाशवाणी इस साल कर रही है अपने नब्बे साल पूरे, तो इसी सिलसिले में हम आपसे हर रोज पूछते हैं एक सवाल। तो आज के सवाल के लिए तैयार हैं आप? आज का सवाल ये है कि आकाशवाणी पर आप समाचार तो सुनते ही हैं, लेकिन हर घंटे समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी पर कब से शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब आपको देना है कि हर घंटे समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी पर कब से शुरू हुआ। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तो आप जल्दी से मेल कीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आती हूँ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। इन दिनों दिल्ली जो है ना वो भट्टी की तरह तप रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पहाड़ों पर भी सूरज की गर्मी जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौतपा चल रहा है और आपसे गुजारिश ये है कि जितना हो सके घर से बाहर कम निकलें। वैसे उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि आज से मौसम बदल सकता है, पर गर्मी तो फिर भी गर्मी है। आखिर मौसम गर्मी का है तो वो तो रहेगी ना। लेकिन हाँ, फिलहाल लू से निपटने की तैयारी जरूरी है, क्योंकि लू से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन और थकान जैसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर हालात हों तो फिर हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब क्या है हीट स्ट्रोक और क्या है इसके लक्षण और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के हेड डॉक्टर संजय कुमार। आइए सुनते हैं।
2: हीट स्ट्रोक के लक्षण कैसे हैं और क्या उसमें बचाव हम कर सकते हैं? तो इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक ये सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए इसका नाम हीट स्ट्रोक दिया हुआ है। और इसमें मोर्टेलिटी, जैसे ने बताया कि जो डेथ रेट है वो 50-70% है, डिस्पाइट अगर आप बेस्ट ऑफ केयर देते हैं उसके बावजूद भी, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी के साथ डेथ रेट इसमें काफी हाई होने के है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट यूजली वॉमिटिंग करता हुआ आता है, नोजिया वॉमिटिंग, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में यानी घफलियत में आता है, और साथ में उसको प्री कोमा जो कंडीशन होती है, हेडेक भी हो सकता है, और पसीने वगैरह आना उसको बंद हो जाते हैं, या फिर वो कोमा में जाने लग जाता है, या फिर दौरे पड़ रहे हों, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम रिकग्नाइज करते हैं जब टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 106.7-8.9 तक भी चला जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर पड़ना, ये सब चीज को देखते हुए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हीट स्ट्रोक का। और इसमें बचाव के जो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बाहर जो तपती हुई धूप होती है 12 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे तक भी, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर ना निकले, और निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें, जैसे कि हल्के रंग वाले कॉटन सूती कपड़े पहने, कैप पहने, या गमछा लें, या फिर कोई सर पे ढकने के लिए अम्ब्रेला ले सकते हैं, और साथ में कुछ पानी, ORS या किसी भी तरल पदार्थ को पीते हुए, अपने आप को हाइड्रेशन रखते हुए आप इस अगर निकलना भी है तो आप निकलिए, कम से कम समय में अपना काम करके छांव में आप वापस आ सकते हैं, या फिर इसको पोस्टपोन कर दें कि ये जो 12 से 4 के बीच का जो समय है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। और जो लोग, जैसे खास करके जो लोग वेंडर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या पुलिसकर्मी हैं, इनको, तो ये लोग भी छाए में ज्यादातर रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रहें और अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें। और जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लूज कपड़े पहने, टाइट सिंथेटिक कपड़े ना पहने, तो ये चीजों से आप बचाव कर सकते हैं।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप नीतू के साथ। हम सब प्लास्टिक के नुकसान जानते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, प्लास्टिक कचरे को खत्म करने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग वेट लॉस के लिए प्लास्टिक चबा रहे हैं। जी हाँ, सुनकर आपको अजीब लगा ना, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। पर प्लास्टिक ईटिंग का ये नया ट्रेंड है जो चीन में शुरू हुआ। इसमें युवा अपने मुंह पर प्लास्टिक रैप लगाते हैं और उसमें भोजन डालकर चबाते हैं, पर निगलते नहीं है, थूक देते हैं। ऐसा करने का मकसद ये कहा जा रहा है कि दिमाग को धोखा दिया जाए, जिससे दिमाग को लगता है कि भोजन खा लिया गया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट इसे बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं और किसी को भी इसे अपनाने की सलाह नहीं दी जाती। तो मैं भी यही कहूंगी कि आज के दौर में जाने क्या क्या क्या हो रहा है, कभी कभी सिर्फ वायरल होने के लिए भी ट्रेंड्स बना दिए जाते हैं। तो प्लीज आंख बंद करके किसी भी ट्रेंड को फॉलो ना करें, क्योंकि प्लास्टिक हम सबके लिए खतरनाक है। तो ऐसी हदों को पार ना करें जो वाकई में आपके जीवन के साथ खेल सकते हैं।

आदर्श गांव क्या है? वो है जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी सेवाओं तक पहुंच हो, ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है, अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना। आदर्श ग्राम योजना के विजन के मुताबिक इन गांवों में सभी बुनियादी ढांचे होंगे और उनके निवासियों को ऐसी सभी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच मिलेगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। स्वच्छता और पर्यावरण के लिहाज से आदर्श

गांव में मजबूत सड़कें, सभी घरों में बिजली, बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ सबके लिए आवास, सुरक्षित पेयजल वगैरह जरूरी है। तो बस इसी तरह से ये ही है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल्ली।

वीर सावरकर को आज हम याद कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रखर क्रांतिकारी, चिंतक और राष्ट्रवादी नेता थे वो। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना, बल्कि अपने लेखन और विचारों के माध्यम से भी युवाओं में देशभक्ति की ज्योति जगाई। अंडमान की सेल्यूलर

जेल हम सब जानते हैं, जिसे काला पानी के नाम से आज भी जाना जाता है। उस जेल में कठोर यातनाएं सहने के बावजूद उनका साहस और देश प्रेम अडिग रहा। वीर सावरकर का जीवन त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू के साथ हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर लौट कर आती हूं मैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
8: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप। ये है म्यूजिकल दिल लगी। कुछ समय पहले ना ऑकलैंड में एक खास तरह की पार्टी का आयोजन किया गया जिसका नाम था सेम हाइट पार्टी, यानी इस पार्टी में शिरकत करने वाले लोग एक बराबर कद के थे। हालांकि यहाँ 4 फीट 11 इंच लंबे लोग भी थे और 6 फीट ऊंचे भी, लेकिन सभी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। कैसे? क्योंकि सबके कद को एक बराबर करने के लिए उन्हें उतनी ही हील्स वाले जूते दिए गए। आप शायद सोच रहे होंगे कि लोगों को ऐसे आइडियाज आते कहां से हैं। वाकई बात यही है कि पता नहीं कहां कहां से लोग आइडियाज ले लेते हैं। तो इस पार्टी के आयोजकों को ये आइडिया आया एक प्रसिद्ध जर्मन कलाकार की मशहूर कृति देखकर जिसका नाम था लेवल। अब ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया आ सकता है। आप भी ट्राई करते रहिए, मैं आपको गाने सुनवा रही हूँ। हो सकता है कि आपको इन गानों से ही कोई आइडिया मिल जाए।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्लगी है ये, और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूरे करने जा रहा है। और इसी सिलसिले में हमने आपसे सवाल पूछा था कि आकाशवाणी पर हर घंटे समाचार प्रसारित होने कब शुरू हुए, तो बहुत कम सही जवाब आए हैं। प्रशांत कुमार ने सही जवाब दिया है, अनु बड़जातिया, मधु किरण, रामकृष्ण घोटिकर और मनोहर लाल गांधी, इन्होंने सही जवाब दिया है। इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं, एक और सज्जन हैं हमारे साथ जिन्होंने सही जवाब दिया है, जो कि है सज्जन जांगड़ा। हेलो सज्जन जी।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते सज्जन जी, तो बताइए सही जवाब क्या है।
1: मैम मैं 15 अगस्त 1985 को जो है ना,
0: हाँ जी,
1: ये अपने आकाशवाणी से जो ना प्रति घंटे समाचारों का प्रसारण शुरू हुआ था।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं?
1: मैम पहले सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, और तमाम श्रोताओं को भी जो आकाशवाणी से इतने दिल से जुड़े हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से शिवानी मंडी से बात कर रहा हूं, और रेडियो से मैं लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूं मैम।
0: 35 साल
1: है जी, ना? जी जी,
0: कितने लंबे, मतलब आप बहुत ही पुराने हमारे श्रोता हैं। तो अपना कोई अनुभव आप हमसे बांटना चाहें तो बिल्कुल आप बांट सकते हैं, अभी आपके पास मौका है।
1: अनुभव तो मैम आकाशवाणी के जो इतने हमने बदलाव देखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि देखो पहले हम रेडियो के माध्यम से सुनते थे।

0: शिक्षा मनोरंजन उसको सार्थक करते हुए इतना जो आगे बढ़ा है, ये जो 90 साल का आकाशवाणी ने जो सफर पूरा किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी श्रोता मित्रों को, पूरी आकाशवाणी की टीम को जो इतनी अथाह मेहनत की बदौलत जो है ना रात और दिन 24 घंटे तक हमारे तक प्रसारण पहुंचाते हैं और इतनी दूर दराज तक आकाशवाणी अपनी पहुंच रखती है, लगभग 100% कहा जाएगा कि अपना जो कवर करती है।
1: जी जी, अच्छा चलिए, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की हैं, अपने अनुभव भी बांटे, तो आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो बताइए।
0: मैम, पसंद का गाना तो मैं भरत व्यास जी का लिखा हुआ एक गाना रहेगा, फिल्म बूंद जो बन गई मोती का। हाँ हाँ। और मुकेश जी की खूबसूरत आवाज में है ये, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला, ये
1: बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। तो चलिए आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने जब अपना पहला समाचार बुलेटिन शुरू किया था ना, तो वो सिर्फ अंग्रेजी में प्रसारित होता था, बाद में हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में समाचार शुरू हुए, जिससे रेडियो जो है वो जन जन की आवाज बन गया। जैसा कि अभी सज्जन जी भी बता रहे थे, 1985 से आकाशवाणी पर हर घंटे समाचार प्रसारित होने शुरू हुए। तो सज्जन जी की पसंद पर एक गाना जो है जो वो सुनना चाहते थे, वो मैं भी आपको सुनवाना चाह रही हूं, और वो गाना आप सुनिए और नीतू को इजाजत दीजिए। म्यूजिकल दिल लगी का सफर यहीं तक है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर

0: सावर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometer of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The festival of sacrifice Eid al-Adha or Bakrid is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In national capital Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In a message, the president said that the festival symbolises devotion, sacrifice and selflessness. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Eid al-Adha. In a social media post, Mr. Modi hoped that the occasion will deepen the spirit of brotherhood and happiness in the society. He also prayed for everyone's success and good health. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also noteworthy. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sun

0: Rises Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the Norwegian world number 1 Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament yesterday. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Alireza Firuza in the final game. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 695 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज पूरी दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर में ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसके बलों ने 4 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। अमरीका ने कहा कि ये ड्रोन जलडमरू मध्य के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में विस्फोटों की खबर दी, हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों से कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से में निवासियों के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं और हिजबुल्ला के खिलाफ नए हमलों से पहले इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसराइली रक्षा बलों ने निवासियों से जहरानी नदी के उत्तर में सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। ये 17 अप्रैल को युद्ध विराम लागू होने के बाद से सबसे बड़ा निकासी आदेश है। इसराइल ने कल दक्षिणी शहर टायर पर हमले किए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये हमले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल में नागरिकों पर हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों के बाद अपने जमीनी अभियान के विस्तार की घोषणा के बाद हुए हैं। इसराइल की सेना ने पिछले 24 घंटों में 9 बार लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी है, जिससे इसराइल लेबनान सीमा पर विस्थापन की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला ने देश में आपदा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता का अनुरोध किया है। क्यूबा को अमरीका द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल समर्थन का आग्रह किया। अमरीका द्वारा क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद तथा ऊर्जा और ईंधन की कमी को लेकर देश में तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने परिषद में कहा कि उनका देश मानवीय आपदा का सामना कर रहा है, इसलिए ये समय एकजुटता दिखाने का है। अमरीकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। देश में भोजन, दवा और बिजली की कमी हो गई है। देश 22 घंटे या उससे अधिक समय तक बिजली कटौती से जूझ रहा है और स्थिति बेहद गंभीर है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। रोग नियंत्रण केंद्र ने पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के निरंतर समर्थन और

0: बद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुंडी बुगियो वायरस से होने वाले इबोला स्ट्रेन के लिए कोई भी स्वीकृत दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका को विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत 695 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी बाहरी भुगतानों और आयात नियंत्रणों से जुड़ी दो मुख्य शर्तों का उल्लंघन होने के बावजूद दी गई है। इस कार्यक्रम की पांचवी और छठी समीक्षा पूरी होने के बाद जारी बयान में IMF ने कहा कि श्रीलंका कोई नया बाहरी भुगतान बकाया न रखने और आयात प्रतिबंधों को लगाने या उन्हें और सख्त करने से के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित हैं। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। ये अवशेष मंगोलिया की राजधानी उलानबतार में 31 मई से सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाएंगे। वहां 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पहल भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे सांची जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के प्रति विदेशी पर्यटकों की रुचि भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
0: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृहमंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। ईद उल अजहा पैगम्बर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुकरा के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। भारतीय दूतावास ने बताया कि रहीम को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में सऊदी कानून के तहत 20 साल की जेल की सजा काटने के बाद क्षमादान देकर रिहा कर दिया गया। रहीम को एक 15 वर्षीय लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। आर प्रज्ञानानंद ने कल नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में नॉर्वे के विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। डी गुकेश को फाइनल में अलीरेजा फिरोजा से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानानंद के 4.5 अंक हो गए हैं और वे नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रज्ञानानंद अब अलीरेजा फिरोजा से पीछे हैं, जो 7.5 अंकों के साथ प्रतियोगिता में शीर्ष पर हैं। वहीं गुकेश 3.5 अंकों पर बने हुए हैं। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में दो बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $695 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुनील वर्मा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. United States launches fresh strikes on Iranian military site near Strait of Hormuz. Africa Centers for Disease Control and Prevention thanks India for sending emergency medical supplies to contain Ebola outbreak in Congo. IMF approves $695 million funding for Sri Lanka. Eid al-Azha being celebrated across the world today. And Grandmaster R. Pragyananda outshines world number one Magnus Carlsen in third round of Norway chess. The United States military has carried out fresh strikes on an Iranian military site in Bandar Abbas, a strategic port city in southern Iran near the Strait of Hormuz. U.S. Central Command confirmed its forces shot down four Iranian one-way attack drones, it said, posed a threat around the strait before targeting the Iranian ground control station in Bandar Abbas as it was preparing to launch a fifth drone. Iranian media reported explosions to the east of the city, though Iranian authorities said the strikes caused no damage or casualties. The latest U.S. military strikes occurred overnight on Wednesday, May the 27th, into Thursday, May the 28th, 2026, following earlier defensive U.S. strikes on Monday, May the 25th, that targeted missile launch sites and vessels suspected of laying mines in the Strait of Hormuz. India has sent emergency pharmaceutical supplies to support efforts to contain the Ebola outbreak in Congo. In a social media post, Africa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, said the consignment donated by India was received in Uganda by its Eastern Africa Regional Coordination Center. The supplies include essential diagnostics, therapeutics, infection prevention and control materials and case management support, which will be deployed to affected communities in eastern DR Congo. Africa CDC has welcomed the arrival of emergency pharmaceutical supplies generously donated by the government and people of India to support the ongoing response to the Bundibugyo Ebola outbreak in Congo. The Bundibugyo strain is one of the six known species of the Ebola virus and has caused periodic outbreaks in parts of Africa since it was first identified in Uganda in 2007. The International Monetary Fund has approved a US $695 million disbursement to Sri Lanka under its extended fund facility program, despite breaches of two key conditions linked to external payments and import controls. In a statement issued after completing the combined fifth and sixth reviews of the program, the IMF said Sri Lanka had failed to meet performance criteria on no new external payments arrears and on avoiding the imposition or intensification of import restrictions. The IMF said a cybercrime incident targeting Sri Lanka's treasury caused missed debt repayments worth $2.5 million owed to Australia since November 2025. Colombo has requested a waiver, citing the breach as minor and saying corrective measures are underway. On a special initiative of Prime Minister Narendra Modi, sacred relics from the UNESCO World Heritage Site, Sanchi Stoop, are being sent to Mongolia.
2: These relics belong to two of Lord Buddha's most prominent disciples, Sariputra and Maudgalyayan. Today, they will be flown to Delhi from Bhopal's Raja Bhoj Airport with full state honours. Tomorrow, the relics will be placed on public display at the National Museum in New Delhi. After that, on May the 30th, a special Indian Air Force aircraft will carry them to Mongolia. From May the 31st, the relics will be kept for public viewing in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. More than 10 lakh devotees and tourists are expected to visit. This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety across the world. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In the national capital, Delhi, the main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. The festival of Eid ul-Azha is also being celebrated in Bangladesh with solemnity and festivity as millions of Muslims across the country offered prayers and performed animal sacrifices commemorating the spirit of devotion. In the capital Dhaka, the main Eid congregation was held at the National Eidgah ground adjacent to the High Court, while Baitul Mukarram National Mosque organized five Eid congregations beginning at 7:30 a.m. Indian national Abdul Rahim, who spent nearly two decades in prison in Saudi Arabia in a high-profile case that drew widespread attention from the Indian diaspora, is finally returning home to Kerala after being released from jail. A report.
3: Rahim, a native of Raman Tukara in Kozhikode district, left Saudi Arabia for India earlier today, marking the end of a long legal and emotional ordeal for his family. The Indian embassy confirmed that Rahim, who had once faced a death sentence, was pardoned and released after serving a 20-year prison term under Saudi law. Rahim had been convicted in connection with the death of a 15-year-old Saudi boy with disabilities in what was described as an accidental incident. The case triggered a massive support campaign among expatriate Indians, especially the Malayali community in Saudi Arabia. The Indian embassy in a statement said it had consistently pursued the case with Saudi authorities and regularly monitored Rahim's well-being throughout his imprisonment. The embassy also thanked Saudi authorities for their cooperation and expressed gratitude to the Indian community for its unwavering support, solidarity and faith in the judicial process. With Vinod's report from Dubai, this is Shagun Chopra for World News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Cyprus to participate in the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, GIMNIC. In a social media post, the External Affairs Minister thanked Vice President of the European Commission, Kaya Kallas, and Foreign Minister of Cyprus, Dr. Konstantinos Kombos, for the invitation. In Pakistan, five people were killed and three others injured after unidentified armed men opened indiscriminate fire on a group of locals in the Shehrag area of Balochistan's Harnai district. The armed assailants had set up a picket near Sheikh Musa Baba Chowk and were checking the computerized national identity cards of passers-by. Police said an altercation broke out when some locals resisted the checking, following which the unidentified gunmen opened fire on the crowd. Four people died on the spot, while another critically injured victim succumbed to injuries while being shifted to Quetta for medical treatment. In Norwich's, R. Pragyananda defeated world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim three full points in round three of the tournament yesterday. In contrast, world champion D. Kukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Ali Reza Firozjah in the final game following a hard-fought classical draw. The victory was another major statement from Pragyananda, who arrived in Oslo on the eve of the Norway Chess after a string of impressive performances at the Superbet Chess Classic Romania in Bucharest. The win took Pragyananda to 4.5 points and lifted him to the sole second place in the standings at the Norway Chess. And now, before we close, here are the highlights.

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है दिल का मेल बॉक्स और मैं हूं नीतू आपके साथ। और आ रहा है एक बड़ा ही धमाकेदार गाना, लेकिन ये गाना आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी शिरकत करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो fmgoldairdelhi@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। यहां पर आप अपनी पसंद के गानों की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिलहाल तो जिनकी पसंद का गाना आ रहा है वो है चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

हर जगह जो है ना उसकी अपनी खासियतें होती हैं, तो अपने देश का भी कोई सानी नहीं है, तो अपने देश के ऊपर गाने सुनने की कोशिश कीजिए। अभी जो अगला गाना आ रहा है ना, वो बहुत ही मशहूर फिल्म से है। उस फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा थी, वो फिल्म राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने को सुनना चाहा है बहुत सारे लोगों ने, उनमें नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, शहनाज, सुहेल, रसीद, अनम, यशफ, और इनके अलावा रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष ये सुनना चाहते हैं इस गाने को। अनिल जैन साहब, संयम, मुस्कान, जीवेम सुनना चाहते हैं इस गाने को, तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं जो उनकी पसंद का गाना है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सौ.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप दिल का मेल बॉक्स में और ढेर सारी फरमाइशें मुझ तक पहुंच रही हैं अब, लेकिन जो वक्त है वो आधा ही रह गया है तो बस मैं जल्दी

सुनवा देती हूँ आपको दीवाना फिल्म का गाना, जिसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत, कमल साहनी ने, और इनके अलावा कुछ और लोग हैं जो इस गाने को सुनना चाहते हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। तो चलिए आपकी पसंद का मुकेश जी की आवाज में सुनते हैं ये गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। दिल का मेल बॉक्स में आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आज पूरी भी हुई है, लेकिन अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है, जिनकी रिक्वेस्ट का गाना आ रहा है, वो हैं वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान। और गाना कौन सा है? सदाबहार हीरो, सदाबहार हीरोइन, सदाबहार फिल्म, पेइंग गेस्ट देवानंद नूतन।

बिल्कुल कोई जवाब नहीं है इन सभी गानों का जो हम आपको सुनवा रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। और अब आ रहा है आखिरी गाना, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश की पसंद का, और इनके अलावा राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की फरमाइश पर गैम्बलर फिल्म से ही है ये गाना। इसमें भी देवानंद साहब ही हैं। और नीतू को आप इजाजत दीजिए, इस गाने को सुनते रहिएगा क्योंकि दिल का मेल बॉक्स का समय खत्म हो रहा है। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है एक बार फिर से। ये है तस्वीर और तस्वीर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहर की जो कि अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ये है अजमेर। अजमेर जिसका नाम अजय मेरू से पड़ा है जिसका अर्थ है अजय पहाड़ी। चौहान राजाओं की पुरानी राजधानी हुआ करता था ये और उस सांस्कृतिक विरासत की झलक यहां की कला और शिल्प में देखी जा सकती है। राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है अजमेर, जहां हिंदू और सूफी संस्कृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।

0: अजमेर की बातें हो रही हैं आज तस्वीर में, तो अजमेर जाने के लिए बेहतरीन समय माना जाता है वो जब वहां या तो उर्स चल रहा हो या फिर अजमेर के पास जो पुष्कर है वहां पुष्कर मेला चल रहा हो। बाकी जो असल में घूमने का मौसम है वो तो अक्टूबर से मार्च है। अजमेर का निकटतम एयरपोर्ट है किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको टैक्सी और बस आसानी से मिल जाएगी। अजमेर जंक्शन जो है वहां पूरी तरह से वो जुड़ा हुआ है दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों से। जयपुर, दिल्ली और राजस्थान के जो दूसरे शहर हैं वहां से आपको बस, टैक्सीज सब मिल जाएंगी। जयपुर से अजमेर जो है वो सिर्फ 2-3 घंटे की दूरी पर है और दिल्ली से भी बहुत ज्यादा तो नहीं है। आप चाहें तो अपनी कार से भी वहां जा सकते हैं। आप सोचिएगा कि आपको कब जाना है। मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेके आती हूं।
1: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी।

0: के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: अजमेर की बात कर रहे हैं आज हम तस्वीर में, जो कि खास तौर पर अजमेर प्रसिद्ध है अजमेर शरीफ दरगाह के लिए, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग आते हैं। यहां फारस के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहां विशाल चांदी के दरवाजे हैं जो बारीक नक्काशी से सजे हुए हैं। वैसे तो यहां साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रमजान और उर्स के दौरान तो यहां देश विदेश से लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दरगाह के हॉल में ना कव्वालियों की गूंज रहती है, उन्हें कहा जाता है महफिले समा। तो अगर आप दरगाह तक जा रहे हैं ना, तो इन कव्वालियों को कुछ देर ठहर कर जरूर सुनें।

अजमेर की बातें हो रही हैं आज और अजमेर में है भारत की प्राचीन मस्जिदों में से एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसके अलावा आप अजमेर में तारागढ़ किला देखने जा सकते हैं जो 14वीं सदी का एक बेहतरीन वास्तुशिल्प नमूना है। इसके कमरों में की गई बारीक नक्काशी और सुरंगों के जाल को देखकर ना आप एकदम हैरान हो जाएंगे। इन सुरंगों का इस्तेमाल दुश्मन के हमलों के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। चौहान वंश के राजा जो योद्धा जिनको हम आज भी याद ही करते हैं पृथ्वीराज चौहान, उनको समर्पित है पृथ्वीराज स्मारक। ये इतना भव्य है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी उसे देखकर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की काले घोड़े पर सवार एक प्रतिमा भी है यहाँ जो अरावली पहाड़ियों के बीच एक पहाड़ की चोटी पर है जो कि दिखने में ही भव्य लगती है। अजमेर की बातें हम और भी करेंगे लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं और उसके बाद आते हैं अजमेर की बातें करेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक?

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं तस्वीर। और आज तस्वीर में हम बात कर रहे हैं अजमेर की। अजमेर हिंदू सूफी मुस्लिम धर्म का तो केंद्र है ही, जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र है, जहां शानदार सोने जी की नसियां नाम का मंदिर है। वास्तुकला और संस्कृति का यह अद्भुत संगम आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसकी पहली मंजिल को स्वर्ण नगरी हॉल कहते हैं, क्योंकि यहां पर सोने की परत चढ़ी हुई ऐसी अद्भुत प्रतिकृतियां हैं जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दर्शाती हैं। अजमेर में किले, महल और पुरानी हवेलियां हैं। यहां का अकबर महल, जिसे अकबरी किला भी कहते हैं, वो खूबसूरत तो है ही, वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, जिसकी पत्थर की दीवार जो है वो लगभग अभेद्य थी। ये महल 1616 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर और सर थॉमस रो के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात के लिए जाना जाता है। अकबरी किले के अंदर अजमेर सरकारी संग्रहालय है, जहां पर ऐतिहासिक कलाकृतियां आप देख सकते हैं, मूर्तियां, लघु चित्र और बहुत सारी चीजों का एक शानदार संग्रह है, जिसे देखकर आपको वाकई अच्छा लगेगा। क्योंकि इतिहास के बारे में जब हम जानते हैं वो उस समय कैसा हुआ करती थी, जमाना क्या था, किस तरह की चीजें इस्तेमाल करती थी, हमेशा अच्छी लगती है वो सारी चीजें। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप नीतू के साथ और तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं अजमेर की। अजमेर शहर की हलचल के बीच आप दो शानदार कृत्रिम झीलें भी देख सकते हैं, एक आना सागर झील जिसके पास है दौलत बाग गार्डन और खोबरा बेहुन मंदिर, दूसरी है फाय सागर झील। इसका निर्माण 19वीं सदी में अकाल राहत के लिए किया गया था। यहां से अरावली पर्वतमाला के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पर आप बोटिंग, वाटर स्कूटर की सवारी, इन सब वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप टॉटगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य देखने जा सकते हैं या फिर मुगल काल के खूबसूरत बागीचे दुर्गा बाग की सैर कर सकते हैं। जहां भी जाएं वहां पर पूरा एंजॉय करें क्योंकि वो दिन न जाने फिर कब वापस आने वाले हैं।

अजमेर में आपको पारंपरिक हस्तशिल्प से भरे रंग बिरंगे बाजार बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। दरगाह बाजार, नया बाजार और भी बहुत सारे बाजार हैं जहां आपको बेहतरीन राजस्थानी गहने, कपड़े और चमड़े का सामान और फर पेंटिंग या दूसरे हस्तशिल्प वहां आपको मिल जाएंगे। और पारंपरिक राजस्थानी भोजन के साथ साथ मुगल संस्कृति से प्रभावित व्यंजन भी आपको वहां मिलेंगे। मुगल शैली से प्रभावित बिरयानी जो है वो अजमेर का एक पॉपुलर व्यंजन है।

तो आप उसे अगर जाते हैं टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है वो है कढ़ी कचौरी। मिठाई में है सोहन हलवा और गर्मी में ठंडक पाने के लिए ठंडी रबड़ी लस्सी। तो जब आप अजमेर जाएं ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटती हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सौ दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और आप सुन रहे हैं तस्वीर। तस्वीर में आज बातें हो रही हैं अजमेर की, और अगर आप अजमेर में किसी एडवेंचर की तलाश में हैं तो पुष्कर में मिलने वाली ऊंट सफारी और हॉट एयर बैलून से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहें तो दूर दराज के गांवों को जानिए, रेत के टीलों पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका आनंद ले सकते हैं, और अगर वक्त है तो जाइए पुष्कर जो अजमेर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर आपने ब्रह्मा मंदिर आप देख सकते हैं, पुष्कर झील देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए वो प्रसिद्ध है। यहां प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला भी लगता है जो दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। हर साल लगने वाला ये मेला पूरे हफ्ते तक चलता है जहां हजारों सजे धजे ऊंट मवेशी और घोड़े नजर आते हैं। ये एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा ना यहां पर कई तरह की गतिविधियों का आनंद भी लिया जा सकता है, जैसे ऊंट और घोड़ों की दौड़, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जादू के शो, यहां तक कि सबसे लंबी मूंछ की जो प्रतियोगिता है वो भी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो आप जाइए, और यहां पर दुल्हन प्रतियोगिता भी होती है, तो आप जब अजमेर जाएं तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम जो इंटरनेट से रिसर्च करके तो जाते हैं मगर कुछ कुछ चीजें ना रह जाती हैं, और वहां जाकर हमें पता चलता है, अरे हम जब वहां से वापस आ जाते हैं, अरे ये तो रह गया, ये तो हमने किया ही नहीं। तो अभी इसीलिए मैंने सारी बातें आपको बताई हैं ताकि आप ध्यान रखें इन सब बातों का।

तस्वीर का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो नीतू को इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी इसी चैनल पर। जल्दी ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रूपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं जबकि मुंगेर भागलपुर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है।

0: आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, आज के इस खास दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हुए जिनका नाम साहस, राष्ट्रभक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है। उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना गया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और समाज सुधारक जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंडमान सेलुलर जेल की कठोर यातनाएं हो या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार, वीर सावरकर का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा। उन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता की बात नहीं की बल्कि समाज में फैली भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। तो आइए उनके विचारों और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी दूर गगन के छांव में। और दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल, आकाशवाणी जब गांव-गांव तक पहुंचा, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा रेडियो जो गांव को दुनिया से जोड़ देता था। जब शहरों में खबरें बन रही होती थी, तब आकाशवाणी उन्हें सीधे खेतों तक पहुंचा रही थी। किसान अपने दिन की शुरुआत मौसम के बुलेटिन से करते थे और उसी आधार पर तय होता था कि बीज कब बोना है, फसल कब काटनी है। रेडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता था, यह सही निर्णय लेने की समझ भी देता था। दूर दराज इलाकों में जहां संसाधन सीमित थे, वहीं इसके शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों के लिए चलती फिरती कक्षा बन जाते थे। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह, टीकाकरण की जानकारी और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाते गए। और इसी कड़ी में एक अहम पहल हुई, 17 नवंबर 1959 को रेडियो रूरल फोरम्स की शुरुआत। इन फोरम्स में गांव के लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुनते, फिर उन पर चर्चा करते। कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके और ग्रामीण जीवन से जुड़े मुद्दे इनका केंद्र होते थे। इन चर्चाओं से निकले सवाल और सुझाव आकाशवाणी केंद्रों तक पहुंचते और अगले प्रसारण में उनके जवाब दिए जाते। यानी यह सिर्फ प्रसारण नहीं था, बल्कि दो तरफा संवाद की एक मजबूत कड़ी थी। और जब बात मनोरंजन की आती तो यही रेडियो बन जाता था पूरे गांव का मंच। गीत, नाटक, लोक संगीत, हर आवाज में अपनी मिट्टी की खुशबू। आपातकाल हो, युद्ध हो या हो प्राकृतिक आपदा, आकाशवाणी ने हमेशा सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचाई। आज भले ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन जो विश्वास रेडियो ने बनाया वो आज भी कायम है, चाहे वो गाँव हो या शहर।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म थी प्रोफेसर।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और अब हम बात करेंगे एक ऐसी असाधारण महान भारतीय वैज्ञानिक की, जिनकी मेहनत ने पूरे देश की जिंदगी में मिठास घोल दी, डॉक्टर जानकी अम्माल की। वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। एक ऐसा समय जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और शोध के रास्ते लगभग बंद थे, उस दौर में उन्होंने न सिर्फ ये मुकाम हासिल किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। उन्होंने साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में गहन शोध किया और इसी शोध ने भारत को एक बड़ी सौगात दी। डॉक्टर जानकी अम्माल ने गन्ने की एक ऐसी किस्म विकसित की, उसमें बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अधिक मीठी थी और जिनकी उपज भी बेहतर थी। उनकी इस खोज ने भारत की आयात पर निर्भरता को खत्म करने में मदद की, लेकिन उनका योगदान सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं था। उन्होंने बैगन और मैग्नोलिया जैसे पौधे की भी बेहतर और अधिक उपयोगी किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिससे खेती के साथ साथ सजावटी पौधों को दुनिया को नई पहचान मिली। सोचिए, हमारी चाय की हर चुस्की में, हर मिठाई के स्वाद में और खेतों की हर हरियाली में, बगीचों की खूबसूरती में उनकी मेहनत और समर्पण शामिल है। वो विदेश गई, वहां अपने शोध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी विरासत को सचमुच चीनी के हर दाने में छोड़ गई। उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे देश की अग्रणी वनस्पति वैज्ञानिकों में शामिल हुई। एक ऐसी वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ पौधों का रूप बदला बल्कि देश की दिशा भी बदली। डॉक्टर जानकी अम्माल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और ज्ञान की शक्ति से एक व्यक्ति पूरे देश में बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी में थोड़ी सी मिठास महसूस हो, याद रखिएगा, उसमें एक भारतीय महिला वैज्ञानिक का सपना भी घुला है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म खट्टा मीठा से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और दोस्तों, किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी आईना बनती हैं तो कभी सहारा। तो आज बात तीन ऐसी ही खूबसूरत किताबों की जो दिल और सोच दोनों को छू जाती है। तो पहली किताब है अक्टूबर जंक्शन, लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। यह कहानी है उन रिश्तों की जो सही वक्त पर पूरे नहीं हो पाते। प्यार, दूरी और अधूरी मुलाकातों के बीच चलती ये कहानी बहुत ही सादगी से दिल को छू जाती है और ये हमें सिखाती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें बस थोड़ा सा बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। दूसरी किताब है मुझे चांद चाहिए, लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। यह एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों और पहचान के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। यह उपन्यास सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि एक स्त्री की इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय लेने की गहरी पड़ताल है।

और यह किताब हमें सिखाती है कि सपने देखना जितना जरूरी है, उन्हें पाने की कीमत और जिम्मेदारी समझना भी उतना ही जरूरी है। और तीसरी किताब है आपका बंटी, लेखिका है मन्नू भंडारी। एक छोटे बच्चे की नजर से देखा गया टूटता हुआ परिवार, बंटी की मासूमियत और दर्द रिश्तों की सच्चाई को बेहद गहराई से सामने लाता है। और यह किताब हमें सिखाती है कि बड़े लोगों के फैसले जो होते हैं अक्सर बच्चों के मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो कभी प्यार अधूरा रह जाता है, कभी सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, और कभी रिश्तों की दरारें मासूम दिल को छू जाती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो सिर्फ वक्त न बिताए बल्कि आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और संवेदनशील बना दे, तो ये तीन किताबें आपके लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है। आज ईद उल अजा यानी बकरीद के इस पाक मौके पर आप सभी श्रोताओं को ढेरों ढेरों मुबारकबाद। दुआ है कि आपके जीवन में खुशियां, अमन और बरकत हमेशा बनी रहे।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी बरसात की रात। और दोस्तों, बंगाल की मिट्टी से जन्मी कांथा कला समय से परे एक ऐसी परंपरा है जहां पुराने साड़ियां, धोतियां और कपड़े फेंके नहीं जाते बल्कि सहेजे जाते हैं। इन कपड़ों की कई परतों को एक साथ रखकर साधारण रनिंग स्टिच से सिला जाता है और यूं बनती हैं खूबसूरत रजाइयां, दुपट्टे और कपड़े जो सिर्फ वस्त्र नहीं, भावनाओं का ताना बाना हो।

होता है। और कहते हैं कि इस कला की जड़ें बहुत पुरानी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध के अनुयायी भी त्यागे हुए कपड़ों को सिलकर अपने दैनिक उपयोग में लाते थे, यानी सादगी और पुनः उपयोग की यह परंपरा सदियों पुरानी है। और समय के साथ इस कला में केवल टांके नहीं लगे, कहानियां भी जुड़ती गई। पौराणिक कथाएं, कमल के फूल और तरह तरह के फ्लोरल और ज्यामितीय पैटर्न धीरे धीरे एक कपड़े पर पूरी एक कहानी, एक इतिहास, एक संस्कृति उभारने लगी। समय के साथ यह कला धीरे धीरे खोने लगी थी, लेकिन 1940 के दशक में प्रतिमा देवी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थी, उन्होंने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। उनके प्रयासों ने कांथा को नई पहचान दी और इसे घरों से निकालकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। इन डिजाइनों में सबसे खास होता है एक सतदल पद्म, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, जो जीवन, सृष्टि और नारित्व का प्रतीक माना जाता है। हर टांका जैसे इस प्रतीक में एक नई ऊर्जा, एक नई भावना भर देता है। आज नक्शी कांथा को GI टैग भी मिल चुका है, जो इसकी विशिष्टता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रमाण है। यह सिर्फ कढ़ाई नहीं, यह बंगाल की महिलाओं की आवाज है, उनके यादें, उनके सपने और उनकी रचनात्मकता का जीवंत दस्तावेज। कांथा हमें सिखाती है कि जो पुराना है वो बेकार नहीं होता, कभी कभी वही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाता है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का रहेगा इंतजार।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी चोर मचाए शोर। और अब बात करते हैं कि ऐसे ट्रेंड की जो धीरे धीरे हमारे सबसे निजी खुशियों को भी कंटेंट में बदल रहा है। जी हाँ, बात हो रही है शादियों की। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं होती, ये वो पल होता है जहां दो लोग, दो परिवार और अनगिनत भावनाएं एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन आजकल ये पल कैमरे के एंगल, रील के ट्रांजिशन और परफेक्ट शॉट के बीच में कहीं खो सा गया है। अब दुल्हा दुल्हन की एंट्री भी दिल से नहीं, रीटेक से होती है। हंसी भी असली नहीं, कैमरा ऑन है, स्माइल प्लीज वाली हो गई है। सोचिए, क्या हर आंसू, हर मुस्कान, हर रस्म सिर्फ इसलिए है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छी लगे? कभी कभी हम भूल जाते हैं कि शादी लाइव जीने के लिए होती है, ना कि बाद में अपलोड करने के लिए। जब मां की आंखों में आंसू हो तो वो पल कैमरे में कैद करने से ज्यादा उसे महसूस करना जरूरी है। जब दोस्त मजाक कर रहे हो तो उस हंसी में शामिल होना जरूरी है, ना कि बस उसे रिकॉर्ड करना। कंटेंट बनाना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन जब कंटेंट असल पल से बड़ा हो जाए तो कहीं न कहीं हम कुछ खो रहे होते हैं। याद रखिए, शादी की सबसे खूबसूरत यादें वो होती हैं जो दिल में रहती हैं, ना कि सिर्फ फोन की गैलरी में। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं, थोड़ा कैमरा नीचे रखिए और उस पल को पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि कुछ लम्हे पोस्ट करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सुहाग से। और अब हम बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जो शोर नहीं करती लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देती है। साइलेंट हेल्थ इश्यूज, जो बिना स्पष्ट संकेत दिए शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तेज दर्द ना हो या कोई बड़ी तकलीफ ना दिखे तब तक सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं चुपचाप पनपती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड या विटामिन की कमी, इनमें शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं या नजर ही नहीं आते। तो ध्यान देने वाले संकेत ये है कि लगातार थकान या कमजोरी, अचानक वजन बढ़ना या घटना, बार बार सर दर्द, नींद का बिगड़ना, त्वचा या बालों में बदलाव, ये छोटे छोटे संकेत है कि आपके शरीर का संदेश हो सकता है कि मेंटल साइलेंट हेल्थ इश्यूज। अब बात करते हैं मन की तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये भी अक्सर चुपचाप हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। तो पहचान कैसे करें? बिना वजह उदासी या खालीपन महसूस होना, पहले जिन चीजों में आपको खुशी मिलती थी उनमें रुचि का कम होना, नींद या भूख में बदलाव। तो क्या करें? अपने शरीर और मन के छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज ना करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा जरूर करें। याद रखिए, बीमारियां हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से भी दस्तक देती है। उन्हें सुनना, समझना और समय पर कदम उठाना ही समझदारी है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी से। और दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी की परफेक्ट छुट्टियां, किसी की फिट बॉडी, किसी की शानदार नौकरी, तो किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर अनजाने में हम अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक हाईलाइट है? असल जिंदगी में हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे असफलताएं, और हर परफेक्ट फोटो के पीछे कई बार अधूरी कहानियां। सोशल मीडिया हमें जोड़ता भी है, लेकिन कई बार यह हमें खुद से ही दूर कर देता है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है, अपनी कहानी होती है। तुलना करने से ना हमारी राह आसान होती है और ना ही हम खुश रह पाते हैं। तो थोड़ा रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी रहा हूं या जी रही हूं? सोशल मीडिया को देखिए, लेकिन उसे अपनी सच्चाई मत बनाइए, क्योंकि असली जिंदगी फिल्टर के पीछे नहीं, आपके आज में बसती है। याद रखिए, तुलना का ये जाल जितना चमकदार दिखता है उतना ही उलझाने वाला भी है। इससे बाहर निकलना है तो खुद को अपनाइए और एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। दूसरों की रोशनी में खुद को मत तौलिए। आपकी अपनी एक चमक है, बस उसे पहचानिए।

अभी हम सुन रहे हैं पंकज उदास और साधना सरगम को, फिल्म है मोहरा। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं देते हैं विराम। मुस्कुराते रहिए, घर आंगन सुनते रहिए, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों

0: पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok.
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
2: Meanwhile,

एक फिल्म जो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के रूप में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय एंट्री थी। इसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

फिल्म सिनेमैटिक महाकाव्य के रूप में देखी जाती है। देश की ऑल टाइम हिट ये फिल्म है कल्ट क्लासिक मदर इंडिया। इस महान फिल्म के जनक निर्माता निर्देशक महबूब खां को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। सभी सुनने वालों को आज के मुबारक दिन की यानी ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके साथ मैं हूं रजनी।

महबूब खान ने कई अभिनेता और अभिनेत्रियों के करियर को स्थापित करने में मदद की जो 40, 50 और 60 के दशक में बड़े सितारे बने। इनमें सुरेंद्र, अरुण कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, निम्मी, नादिरा और नरगिस के नाम शामिल हैं। महबूब खान ने दूसरे मॉस्को फिल्म इंटरनेशनल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल हुए और वो 2 साल तक भारतीय फिल्म महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। फिल्म उद्योग में इतना ऊंचा स्थान रखने वाले महबूब खान की जिंदगी की शुरुआत काफी मुश्किलों भरी रही। ये किस्सा बयान करेंगे इस गीत के बाद जो हमने चुना है फिल्म अंदाज से। आवाज है मुकेश की।

9 सितंबर 1907 को गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा में जन्म हुआ महबूब खान का। बहुत कम उम्र में ही वो मुंबई आ गए और फिल्म निर्माता नूर मोहम्मद अली मोहम्मद के अस्तबल में काम करने लगे। एक दिन उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक चंद्रशेखर की शूटिंग देखी और उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दें। उनके निर्देशन में इतनी रुचि देखकर चंद्रशेखर ने नूर मोहम्मद से कहा कि आप इस लड़के को फिल्म स्टूडियो में चाहे छोटे मोटे काम करने के लिए रख लें, लेकिन इसको फिल्मों के आसपास रखें, सेट्स के आसपास रखें। और फिल्म स्टूडियो में काम करते हुए महबूब खान ने निर्देशन की बारीकियां सीखी, जो कि आगे चलकर उनकी फिल्मों के रूप में सामने आई। आन फिल्म से अगला गीत पहुंच रहा है आप तक, आवाज है मोहम्मद रफी की।

जब महबूब खान ने फिल्म स्टूडियो में काम करना शुरू किया वो दौर था मूक फिल्मों का। करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ मूक फिल्मों में छोटे बड़े रोल भी किए, जैसे जान, दिलावर, जरीना और चंद्रहास। इसके बाद उन्होंने कुछ साइलेंट मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। पहली बार स्वतंत्र निर्देशक के रूप में जिस फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला वो थी अल हिलाल। साल था 1935 का। ये फिल्म सफल रही और इसके बाद उन्होंने सागर मूवी टोन की कई फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे कि मनमोहन, डेक्कन क्वीन, जागीरदार, वतन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और अलीबाबा। फिलहाल अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म अनमोल घड़ी से। आवाज है नूरजहां की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये गीत था फिल्म अनोखी अदा से और आवाज थी उमा देवी की। कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं मदर महबूब खान की और याद कर रहे हैं उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर। 40 के दशक में महबूब खान ने महबूब प्रोडक्शंस के नाम से अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की। उनके प्रोडक्शन में आई पहली फिल्म तकदीर थी, जिसमें उन्होंने पहली बार नरगिस को मुख्य अभिनेत्री के रूप में पर्दे पर उतारा। नरगिस का असली नाम फातिमा था, जो कि बेबी रानी के नाम से कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम भी कर चुकी थी। उन्हें नरगिस नाम महबूब खान ने ही दिया था। तकदीर के बाद हुमायूं और अंदाज जैसी फिल्मों में महबूब खान ने नरगिस को मुख्य अभिनेत्री के रूप में पेश किया, लेकिन उनके सबसे चर्चित फिल्म रही मदर इंडिया, जिसके लिए नरगिस को कालोवी वीरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर इंडिया दरअसल 1940 में बनी एक फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म का नाम था औरत, जिसे महबूब खान ने ही डायरेक्ट किया था।

मदर इंडिया फिल्म से एक गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। महबूब खान के प्रोडक्शन में बनी ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो फिल्म ऐलान हो, अनोखी अदा, आन अमर या अनमोल खड़ी। उनके निर्माण और निर्देशन में आई आखिरी फिल्म सन ऑफ इंडिया थी, जिसकी पटकथा और कहानी महबूब खान ने ही लिखी थी। तो इसी फिल्म से यानी सन ऑफ इंडिया से आपको सुनवाते हैं गीत शांति माथुर की आवाज में।

0: कदम।
1: सन ऑफ इंडिया के अलावा वतन फिल्म की कहानी और अल हिलाल की कहानी पटकथा भी महबूब खान ने लिखी थी। 28 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण महबूब खान का निधन हो गया। इसे एक साल पहले 1963 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2007 में महबूब खान की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।

अमर फिल्म से गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बहुत ही नाजुक विषय पर बनी ये फिल्म थी अमर, लेकिन फिर भी इसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। आज महबूब खान की पुण्यतिथि पर हमने बात की महबूब खान की फिल्मों की, लेकिन वक्त अभी इजाजत नहीं दे रहा कि हम और ज्यादा बात कर सके। हालांकि महबूब खान की जब बात करें तो इतना कुछ है उनकी फिल्मों के बारे में बताने के लिए कि वक्त कम पड़ जाता है। फिलहाल मुझे यानी रजनी को कलाकार बेमिसाल से इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तहत ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला डी के शिव कुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया नायब सदर

0: जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक्दा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की तीसरी रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज अवाम और खासतौर पर ख्वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज्म व जब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाजाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। यह ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेजी लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रूकावट लॉजिस्टिक्स इको निजाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तावुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मलिक।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम एक तरक्की पसंद वसीला है, जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निजाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तिहान के लिए अजसरे नौ जांच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि असरेनो जांच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि ओहदेदार इस बात को

0: कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लियामानी उमूर के वजीर एच के पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि डी के शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमरीकी फौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक अमरीकी फौज और उसके तजारती जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नजदीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी जिला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू न हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी न की जाए। डीजीपी राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यह त्यौहार पुरअम तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तहत ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला डी के शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगतोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केन्द्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर

0: परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बालासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया

कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमित।
2: बिल्कुल, और नीरा, जैसा कार्यक्रम किसान की बात में हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है प्रत्येक दिन की, भाई कोई ना कोई ऐसी बात होगी, ऐसा विषय होगा जिससे जागरूकता और कहीं ना कहीं जानकारी साझा करते हुए वो अग्रसर होंगे कृषि के पथ पर।
1: बिल्कुल, और इसीलिए ये कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ही शायद ये है कि पूर्ण जानकारी, जो विषय हम चुनते हैं विषय भी ऐसा होता है कि जिस पर पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना ही इसका लक्ष्य रहता है इस कार्यक्रम का। और अमित, सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्ण जानकारी जो है वो किसके द्वारा दी जाती है?
2: भई हम आमंत्रित करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और जब उनकी राय किसान भाइयों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी समझ है वो और परिपक्व होती है। इस आधुनिक युग में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति से जो कृषि कर रहे हैं अग्रसर होते हैं, लाभ बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और लागत कम होती है।
1: बिल्कुल, और

0: साथ ही साथ ये कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम, यानी जो भी विषय आज का होगा उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में शंका, शुभा, कोई भी प्रश्न उठता है तो आप डायल कर सकते हैं और सीधा आपको परामर्श जो है वो मिलेगा हमारे एक्सपर्ट से।
1: बिल्कुल, तो भाई फोन इन कार्यक्रम के लिए आपको नंबर बताएंगे, लेकिन आप विषय सुन लीजिए। आज का विषय रहेगा प्राकृतिक और जैविक खेती द्वारा उर्वरक लागत में कमी, यानी कि जिस प्रकार से आज हम कृषि कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर या हम जो उर्वरक पर खर्च कर रहे हैं ये कैसे कम हो, और इसके साथ साथ कैसे जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, उसकी गुणवत्ता बने, हम स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। और इसी के लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर शिवाधार, आप हैं पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद, मेरा किसान भाइयों को भी नमस्कार।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ अब आपको बता देते हैं टेलीफोन नंबर, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करेंगे तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011, और टेलीफोन नंबर है 2342108183 पर आप डायल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न मगर विषय से जुड़ा हुआ।
1: बिल्कुल, यानी कि भाई डॉक्टर शिवाधार जब उपस्थित हैं तो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की ही आवाज में कुछ ना कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं तक पहुंचे कि जो आज का विषय है प्राकृतिक और जैविक खेती द्वारा जो उर्वरक लागत है उसमें कमी आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि प्राकृतिक खेती और जैविक, हम दो नाम ले रहे हैं, दो शब्द जुड़े हैं, कि इनमें डॉक्टर साहब हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती से शुरू करते हैं।
2: देखिए, प्राकृतिक खेती एक बहुत ही, हमें ये कहना चाहिए कि प्राकृतिक खेती शुरू से ही होती आई है हमारे देश में
1: जी,
2: और धीरे धीरे उसका रूप बदलता गया, फिर वो जैविक में बदली, उसके बाद रासायनिक में बदली, और आज हम रासायनिक खेती पर पूर्णतः निर्भर हैं। रासायनिक खेती का मतलब है कि हम विभिन्न रसायनों को, चाहे पोषक तत्व के रूप में हो, चाहे कीड़े मकोड़े बीमारियों को मारने के लिए हो, सभी में रसायनों का प्रयोग करते हैं जो कि बाहर से बने हुए होते हैं, और उसको हमारा किसान खरीद के काफी बड़ा मूल्य चुकाता है
1: जी।
0: जी,
2: तो इन सबको हमारी प्राकृतिक खेती इसका जवाब है, हमें कुछ भी खरीदना नहीं है बाहर से, और जो भी है हमारे खेत में ही तैयार हो रहा है, और किस तरीके से तैयार हो रहा है उसके कई विधाएं हैं, कई स्तंभ हैं, उस तरीके से हम तैयार करके सब
1: चर्चा रहेगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल, आपने कहा कि एक लागत जो है वो हम कह सकते हैं किसान भाई कहीं ना कहीं अपनी आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है वो कीटनाशक है या उर्वरक है, इन पर खर्च कर रहा है। डॉक्टर साहब ने बात बताई, बहुत वास्तव में कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ बिंदु सिद्ध होगा किसान के जीवन में जब प्राकृतिक खेती करेंगे। वहीं डॉक्टर साहब थोड़ा सा यदि जैविक खेती के विषय में बात करें,
2: देखिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों के सिद्धांत एक ही है कि हमें अच्छा गुणवत्ता वाला भोजन मिले, और हमारी जमीन और पर्यावरण, हमारा खेत, जल, वायु और जमीन, तीनों चीजें स्वच्छ रहें। स्वच्छ से मतलब उनमें कोई प्रदूषण ना हो।
0: बिल्कुल,
2: तो अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जैविक खेती में हम बहुत सारे उत्पाद जो होते हैं, जो प्रयोग करते हैं, जो इनपुट जिन्हें कहते हैं, जैसे खाद के लिए या कीड़े मकोड़े बीमारियों के लिए, वो हम खुद भी बना सकते हैं और बाहर से भी खरीद के उसमें लगा सकते हैं। तो मतलब उसमें इनपुट बाहर से आ सकते हैं
1: जी,
2: हम खरीद के मतलब कुछ पैसा खर्च करके लगा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती तो प्राकृतिक है, हमें कुछ भी खरीदना नहीं है, सब कुछ अपने घर में ही बनाना है और उसी से बनाना जो हमारे उत्पाद हैं, उसी से बनाना है। ये मुख्य अंतर है
1: जी। जी, एक नई बात किसान के दिमाग में भी आएगी जो कार्यक्रम से जुड़े हैं, नीरा सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कुछ भी बाहर से नहीं लेके आना है, खरीदना नहीं है। तो अब अगर किसान शुरू करना चाहे, पहली बार किसी के मन में हो कि चलो अब तक जो हम कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम किसान की बात से जुड़ करके कहीं ना कहीं एक सार्थक कदम हमारा किसान भाई उठाए, तो प्राकृतिक खेती कैसे शुरू कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
2: देखिए, हमारे देश में कई तरीके के किसान भाई हैं, किसी के पास काफी लंबी जोत है, किसी के पास कम खेती है, तो मैं सभी से कहूंगा कि खेत का कुछ हिस्सा, मान लो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ हिस्से से ये काम शुरू किया जा सकता है। बाकी आप जैसी खेती कर रहे हैं बाकी वैसी करते रहिए, और कुछ एक एकड़ दो एकड़ जमीन अलग से इस काम के लिए कर सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि आप इसमें सभी कुछ चीजें, अगर प्राकृतिक खेती के स्तंभ में थोड़ा सा बताना चाहूंगा
0: जी, बिल्कुल,
2: कि इसमें यह है कि एक तो हम कोई चीज बाहर से प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरे इसमें गाय का बहुत महत्व है। गाय का महत्व तो इसलिए है कि हम गाय के गोबर

0: से गौमूत्र से और गाय के जितने भी उत्पाद हैं उन सब से हम पोषक तत्वों और इसका जो कीड़े मकोड़े बीमारियों उनका प्रबंधन करते हैं। तो गाय भी अगर साथ में होती है तो उससे काफी कुछ मतलब लाभ होता है और जो इनपुट होते हैं जो वो इससे बनाए जा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा यह है कि इसमें आच्छादन या बापसा एक टर्म कहते हैं, इसमें जमीन का आच्छादन होना जरूरी है। आच्छादन किससे होगा? आच्छादन होगा कि हमारी जो वनस्पतियां खेत में तैयार होती हैं उनसे होगा। तो उन पेड़ पौधों फसलों के अवशेष इन सबसे हम आच्छादन करते हैं। आच्छादन का काम होता है जो प्राकृतिक नमी है या जो सिंचाई से की हुई नमी है खेत में वो उड़ के जल्दी ना उड़ जाए, ज्यादा देर तक संरक्षित रहे। तो ये दूसरा काम ये होता है जब वो फसल अवशेष या जो भी हमने मल्च के रूप में डाला हुआ है
2: जी।
0: वो धीरे धीरे गलेगा भी वहां पे, गलने से जो पैदा होगा काला पदार्थ ह्यूमस जिसे कहते हैं, तो ह्यूमस जमीन में जाएगा। ह्यूमस जाएगा तो उसमें जमीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं जो कई तरीके के जीवाणु रहते हैं जो जमीन में जो लाभकारी होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो अपना काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा लोग ज्यादा काम। तो इस तरीके से जब वो ज्यादा होंगे संख्या में तो हमारा जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं तो वो जटिल फॉर्म में होते हैं, जमीन में उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होते। इन बैक्टीरिया जीवाणुओं का इन सब का काम यह है कि ये उसको पौधों के लिए उपलब्धता बढ़ा देते हैं। तो एक कहना एक तरीके से हम जो जमीन के अंदर का एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट को हम प्राकृतिक चीजें डालकर बैक्टीरिया और जितने जीवाणु हैं जितने भी उन सबको एक्टिवेट करके उन सब की संख्या बढ़ाकर हम एक लाइव सिस्टम एक बड़ा जिंदा पद्धति तैयार कर सकते हैं। जबकि रसायनों से इसका उल्टा हो जाता है। जितने जितने रसायन हम डालते जाएंगे हमारा जो लाइव सिस्टम है जो जीवंत पद्धति हमारे शरीर हमारे जो भूमि के अंदर वो जो एनवायरमेंट है जो पर्यावरण है
1: जी
0: वो बिगड़ जाएगा
2: जी।
0: तो ये अंतर है और ये इसके बेस है।
2: डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि इसका उलट है जब हम रासायनिक खेती की बात करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि बहुत जल्दी से जो रास्ता है किसान भाई बहनों ने रासायनिक खेती का चुन लिया?
0: ये जल्दी से नहीं चुना, हमारे पास कुछ कारण ऐसे थे कि जब हम सन 1960 से पहले जब हम ताजा ताजा आजाद हुए थे
2: जी
0: तो उस समय हमने देखा कि विदेशों में नई क्रांति आई हुई है, यूरिया बनने लगी है और भी फर्टिलाइजर बनने लगी हैं और उसे डालने से विदेशों में काफी बंपर पैदावार हो रही है। हमारे यहाँ सूखा भी था, हमारे यहाँ गरीबी भी थी, चूंकि देश आजाद इतने दिन तक गुलाम रहा था तो इतने पर्याप्त संसाधन नहीं थे और जो संसाधन थे वो हमारे ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से बनाती थी। हमारे पास क्योंकि सरकार नहीं थी तो हमारे किसानों की सुनने वाला कोई नहीं था। तो उन सब की वजह से जो हम थोड़े इसमें आए कि हम शिप टू माउथ थे, मतलब हमारे जो जहाज से खाना आता था उससे हमारा पेट भरता था। जब तक यूएसए का जहाज नहीं आया तब तक हमारा जो है भुखमरी होने के शिकार हो जाते थे, कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाता था कहीं वो। तो धीरे धीरे करके जब हमने उनके ट्रैप में आए
2: जी
0: और हमने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हीं के तरीके से जो उनके उपाय हैं वही हमने अपना लिए, बहुत सारी खाद प्रयोग करने लगे। खादें जब प्रयोग की तो जाहिर है कि उनके बीज भी हमने प्रयोग किए, बौनी जातियां आई जो कि ज्यादा खाद डालने पे भी गिरती नहीं थी और धीरे धीरे फिर उनमें बीमारियां आने लगी, कीड़े मकोड़े आने लगे, तो उसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड उन्होंने तैयार करके देने शुरू कर दिए और आज हम पेस्टिसाइड उस पर इतने निर्भर हो गए, पैदावार तो खूब मिल रही है
2: जी।
0: अब हम इस पोजिशन में पहुंच गए हैं कि हम विदेशों को हम खुद भेजते हैं अनाज, इतना सारा धन धान्य इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन गुणवत्ता अब जब हम इतना चीजें निकालेंगे जमीन से तो कई तरीके की समस्याएं आनी शुरू हो गई।
2: बिल्कुल,
0: एक तो जो उत्पाद होते थे उनकी गुणवत्ता कम होने लगी। वो कैसे कम होने लगी? हम खेत में खाद डालते हैं दो तीन तरीके की पोषक तत्वों की, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, अब जिंक भी डालने लगे हैं, लेकिन पौधा लेता है 16 तत्व जमीन से
1: जी,
2: क्या
0: जो कि जरूरी है, भले ही कम मात्रा में लेता है। अब आप चार चीजें तो खिला रहे हैं, बाकी चीजें जमीन से ले रहा है, तो जमीन में जो बैंक था उसका वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गया, वो खत्म होता गया। तो हम जो भी अनाज पैदा कर रहे हैं जो भी चीज पैदा कर रहे हैं उनमें वो चार चीजें तो खूब मिल जाएंगी, लेकिन बाकी जो चीजें कम हो गई उनकी डिफिशियंसी होगी, वही हमारे शरीर में जाता है। तो शरीर को भी उन्हीं 16-17 तत्व

0: तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब जब शरीर में जाएगा वो तत्व ही कम मात्रा में जो चीज खा रहे हैं ना, तो आपके शरीर में भी डिफिशियंसी होगी, तो आप भी बीमारियों के प्रति और ये सब जो बीमारियां हो रही हैं या पोषण से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। साथ में अब ऊपर से पेस्टिसाइड मिला हुआ, उसका रेजिड्यू कुछ न कुछ बचता ही है।
1: बिल्कुल।
0: अब रेजिड्यू बचेगा वो भी शरीर में जाएगा, वो अपना असर दिखाएगा। तो एक तरीके से हम पर्यावरण को, मानव स्वास्थ्य को, जानवरों के स्वास्थ्य को, वाटर बॉडीज को, सबको हमने प्रदूषित कर दिया रासायनिक खेती से। जैविक खेती अब हम फिर लौटना चाह रहे वापस कि हम कम खाएंगे कम उगाएंगे, लेकिन पहले ये डर था कि इससे बहुत खेती में बहुत कम पैदावार होने लगती है, लेकिन आप सही तरीके से करें तो बहुत सी चीजें पैदा करके और गुणवत्ता युक्त चीजें पैदा करके हम उससे ज्यादा कमाई कर सकते हैं।
1: जी
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात आई कमाई पर तो कहीं ना कहीं कोशिश रहती है, किसान भाई चाहते हैं कि जो आजीविका है कृषि पर कहीं ना कहीं आधारित है, बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्चा भी चलाना है, और जो हम प्रकृति की गोद में प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की बात करते हैं तो आपने कहा कि उत्पादन कम होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि कितने समय तक हमारे किसान भाई बहन कोशिश करें कि भाई ये उत्पादन उतना ही होने लगेगा, इसमें कितना समय लगता है, और हम कैसे माने कि भाई जो हमारा उत्पाद है उसको जो प्राकृतिक प्रमाणन कहां से मिलेगा ताकि वो बाजार में महंगा बिक जाए।
0: देखिए ऐसा है, प्राकृतिक खेती का जैसे जैविक खेती से प्रमाणीकरण होता है, प्राकृतिक खेती का भी प्रमाणीकरण होने लगा है, वही पद्धति अपनाई जा रही है। अब जहां तक सवाल है कि पैदावार की, तो पैदावार अगर सही तरीके से लिया जाए ना, पैदावार होता है कि जो रासायनिक पद्धति है उसमें हम जो आज की खेती कर रहे हैं मोनोकल्चर है
2: जी,
0: एक ही तरीके की फसल लगा दी और उसमें खूब सारा खाद और पानी डाल दिया, सब कुछ डाल के जो ज्यादा पैदा हुआ उसको हमने उत्पादन मान लिया। आप उसी की जगह 10 चीजें, इसमें तो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन भी एक चीज है कि हमने मेड़ पे कोई पेड़ लगा दिए, सब्जियां लगा दी, फल लगा दिए, कई तरीके की दालें लगाई, वो सब लगाई, अगर इन सबका ओवरऑल आउटपुट देखा जाए तो हमारी जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है और ओवरऑल अगर क्वालिटी देखी जाए प्रोडक्ट की वो अच्छी होती है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी से जितना ज्यादा पैसा मिल सकता है रासायनिक खेती से पैदा हुए प्रोडक्ट से, अगर पैदावार कम भी होती तो वो उससे कंपनसेट हो जाती है
2: जी।
0: तो इस तरीके से हम कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे, फायदे में ही रहेंगे, जबकि हम औरों को भी फायदा पहुंचाएंगे।
2: डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं कोई जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि यदि प्राकृतिक उत्पाद होगा, जैविक उत्पाद होगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो कीमत बाजार में भी होगी किसान भाइयों को सामान्य से अधिक मिलेगी। और कार्यक्रम में जहां एक और जो हम अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए चर्चा रखते हैं, बातचीत जाती है, वहीं कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां भी साझा होती हैं जो कृषि के अनुसंधान क्षेत्रों में चलती रहती हैं। और ऐसी ही एक आज भी हमारे पास बाइट है, संबोधन है, तो अपने सभी हम साथियों को, जितने भी हमारे किसान भाई बहन श्रोता साथी हैं, उन्हें बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन 28 और 29 मई 2026 तक NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आइए आपको सुनवाते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या संबोधन दिया, आइए सुनते हैं ये संबोधन।
3: मित्रों, आज हमारा खरीफ सम्मेलन प्रारंभ हुआ है और टीम एग्रीकल्चर आज यहाँ उपस्थित है सम्मेलन में। टीम एग्रीकल्चर का मतलब है राज्यों की टीम, केंद्र की टीम, जिसमें ICR शामिल है, तो हमारे ICR के वैज्ञानिक, केंद्र के अधिकारीगण, राज्यों के अधिकारीगण, FPOs के प्रतिनिधि, ओवरऑल जो खेती के बारे में सोचने वाला समूह है वो आज यहाँ इकट्ठा है। आप जानते हैं कि कृषि राज्य का विषय है और परिणाम राज्यों से ही आते हैं, केंद्र सरकार सहयोग करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाएं और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। उसके लिए खरीफ की फसल की और रबी की फसल की व्यापक तैयारी, बोने के लिए उपयुक्त बीज की, अलग अलग जो हमारे मिशन हैं उनको ठीक से नीचे ले जाने की, इसकी इसमें व्यापक

पैमाने पर चर्चा होती है। राज्य अपनी अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठकों के माध्यम से राज्यों को सारे विषयों के बारे में बताया गया था, और यहाँ अधिकारियों से हमने कहा है कि राज्यों को जो दिक्कत आती है उस समस्याओं पर भी वो ढंग से चर्चा करें। पहले यह सम्मेलन केवल एक दिन का होता था, हमको लगा कि इतने बड़े देश में एक दिन के सम्मेलन में काम चलता नहीं है, तो एक दिन सारे अधिकारी मित्र बैठ के विचार विमर्श करेंगे, तीन समूहों में अलग अलग राज्यों को बांट के ये चर्चा होगी, और दूसरे दिन राज्यों के कृषि मंत्रीगण भी आएंगे। कल जो विषय अभी चर्चा के हमारे हैं उनमें एक आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि के मुद्दे पर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे ये कृषि मंत्री के नाते ये कहते हुए संतोष है कि देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की, इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में, इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3765.63 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है। अपने आप में ये रिकॉर्ड उत्पादन है आज तक का सबसे ज्यादा, और उत्पादन बढ़ा तो केवल चावल का नहीं बढ़ा, चावल का उत्पादन रिकॉर्ड है, अब दुनिया में हम नंबर एक हैं, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, चावल का उत्पादन 1540.24 लाख टन हो गया है, गेहूं का 1206.57 लाख टन हो गया है 1206.57, और मक्का का 550.92 लाख टन हो गया है। लेकिन केवल इन्हीं का उत्पादन नहीं बढ़ा, तिलहन का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिसमें 430.59 लाख टन तिलहन का संभावित है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली 130.74 लाख टन और रेपसीड सरसों 137.68 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है, पूरे आंकड़े में हमने जारी किए हैं, लेकिन अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। दो चीजें हैं जिनमें बहुत काम करने की जरूरत है, दलहन और तिलहन अभी हम इम्पोर्ट करते हैं, तो दोनों के मिशन बनाए हैं, राज्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं, अच्छे सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ाना, डिमोस्ट्रेशन, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग की व्यवस्था सब इसमें है, तो राज्यों के साथ इस पर विस्तार से बात करेंगे। वैसे तिलहन मिशन पर बात करेंगे, बागवानी में हम लोग हार्टिकल्चर में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, संभावनाएं भी काफ़ी है, तो MIDH पे बात करेंगे, कॉटन मिशन पे हम बात करेंगे, फिर आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न का उत्पादन करती रहे, और बदलते हुए क्लाइमेट में, क्लाइमेट चेंज के इस माहौल में जब गर्मी भी पीक पर है और कई बार बारिश भी होती तो एक साथ होती है, बीच में गैप बहुत होता है, कई तरह की परिस्थितियां बदली है, तो उस बदलती हुई परिस्थिति में हम और क्या क्या कदम उठाएं उस पर भी आज चर्चा होगी। हम प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे, सॉयल हेल्थ कार्ड पर चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग कैसे हो, क्योंकि कई किसान जानकारी के अभाव में भी जितनी जरूरत नहीं उतना डालते हैं, तो कोशिश ये होगी कि संतुलित उपयोग हो फर्टिलाइजर का, उस पर भी बात होगी। पौध संरक्षण और सुधार और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटी जोत के आकार के खेत हैं हमारे, लैंड होल्डिंग कम है, तो कैसे प्रॉफिट की खेती हमारा किसान करे, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा है खेती के लिए हमको वित्त पोषण की व्यवस्था, किसान को पैसा भी चाहिए और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी चाहिए, और जो जोखिम आता है कई बार फसल खराब होती है तो उससे भी सुरक्षा चाहिए, तो हम लोग कृषि ऋण के बारे में, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि अभी भी असमानता है, कुछ राज्यों में काफ़ी कम है ये, कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सब राज्यों में अगर किसानों के पास लगाने की पूंजी होगी, KCC होंगी, उस पर लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर खेती कर पाएंगे। फिर हमारा एग्री इंफ्रा फंड है, उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे, PM आशा के तहत खरीद ठीक से हो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे,
डिजिटल कृषि के बारे में फार्मर आईडी बन रहे हैं, उस पर हम लोग

चर्चा करने वाले हैं, पर एफपीओ और कैसे बेटर काम कर सके, अलग अलग राज्यों के समूह ए बी और सी इसमें बनाए गए, वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दिन भर इन विषयों पर चर्चा चलेगी और कल जब कृषि मंत्रीगण सब यहाँ होंगे तो फिर अलग अलग विषयों पर यहाँ प्रेजेंटेशन किया जाएगा राज्यों का और देश का। कृषि रोडमैप खरीफ की फसल के लिए हम लोग फाइनल करेंगे और उसके हिसाब से सब व्यवस्थाएं करके हम राज्य और केंद्र मिलके जो लक्ष्य उनकी पूर्ति का प्रयास करेंगे। इस बीच एक और अभियान पर चर्चा करेंगे, खेत बचाओ अभियान पे, तो उस पर भी व्यापक चर्चा के बाद फिर कल हम लोग अपनी बात कहेंगे। देश बढ़ा इसलिए इस बार केवल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर की नहीं हो रही, इसके अलावा हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस शुरू की है। अभी 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारी संपन्न हो चुकी है, एक हमारी जयपुर में, एक लखनऊ में, एक भुवनेश्वर में, अभी 2 और होनी है, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक दक्षिण में। तो उनकी तिथियां भी हम तय करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग खेती की होती है, तो वहाँ जब उस ग्रुप में बात करते हैं तो वो ज़्यादा व्यवहारिक होती है और हर एक राज्य के बारे में डिटेल चर्चा हो पाती है। आगे ये भी विचार है कि मोटे तौर पर 8, वैसे तो 15 से ज़्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, लेकिन ICR ने जो विभाजन किया मोटे मोटे 8 बनते हैं, तो 5 के बजाय क्या इन 8 में हम ये रीजनल कॉन्फ्रेंस करें ताकि चीज़ें नीचे तक पहुँचे, ढंग से पहुँचे, उस बात का प्रयास हमारा है। मुझे लगा कि आज कॉन्फ्रेंस ये खरीफ की प्रारंभ हो रही, तो प्रारंभ में ही आपको कुछ जानकारी दूं। वैसे डिटेल प्रेजेंटेशन भी हमारे पास कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन विषय लगभग आपके सामने आ गए।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग अरे अब पहली वाली बात कहाँ
4: पर हम तो सब यही डाले हैं
3: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
4: सच है
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
4: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
2: मित्रों आप हमारे साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के बाद आइए चलते हैं विषय की ओर प्राकृतिक और जैविक खेती द्वारा उर्वरक लागत में कमी डॉक्टर शिवाधार हमारे साथ बने हुए हैं लगातार तो डॉक्टर साहब यहाँ जो बात है उसमें है उर्वरक लागत में कमी अभी हम देख भी रहे हैं कि सरकार के माध्यम से भी किसानों को कहीं ना कहीं एक पैमाना दिया जा रहा है कि यदि इतनी आपकी खेती है ये फसल आपने लगाई है तो केवल इतने ही बोरे आपको उर्वरक मिलेगा तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है सरकार कदम बढ़ा रही है कि हम जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े यह विषय भी है बहुत अच्छी बात है तो इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा क्या हमें करना चाहिए
6: देखिए आजकल वैश्विक स्थिति ऐसी है कि हम उर्वरकों की कीमत लगातार बढ़ रही है वैश्विक बाजारों में
2: जी
6: और आने वाले समय में अगर कीमत बढ़ जाती है तो हमारी सरकार इतनी सारी सब्सिडी के रूप में इतना सारा पैसा हजारों करोड़ खर्च कर रही है और किसानों को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है कि उसमें भी तो हम चाहते

0: उसमें ये होता है कि गाय के गोबर में, अगर देसी गाय आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी गाय नहीं है कोई और गाय भी है तो गाय के गोबर में कुछ न कुछ इस तरीके के होता है कि आप ये जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बना सकते हैं। अदरवाइज जेबू या जो अपने देसी एनिमल हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस मामले में हम देखेंगे कि हम उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम होगी, और निर्भरता कम होने से जो लागत हमारी ज्यादा लगती है और सरकार पे जो अतिरिक्त बोझ है वो भी कम होगा। तो हमें प्राकृतिक खेती, हमारा तो ये निवेदन है सभी किसान भाइयों से
1: जी।
0: कि अपनी खेती का कम से कम 20% हिस्सा, कम से कम 20% हिस्सा जैविक खेती में या इसमें प्राकृतिक खेती में जरूर कन्वर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं।
1: जी, यानी अमित, बात फिर वहीं आ जाती है जैसे डॉक्टर साहब ने शुरुआत में कहा था कि पहले प्राकृतिक खेती से जैविक खेती की ओर बढ़े और फिर उसके बाद रासायनिक खेती की ओर। तो मुझे लगता है कि उल्टा चक्र भी इसी तरह से चलेगा और फिर हम एक दिन ऐसे मौके पर पहुंचेंगे जहां उत्पादन भी अच्छा होगा, गुणवत्ता भी अच्छी होगी और खुशहाली ही खुशहाली होगी।
2: बिल्कुल, और डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि भाई जो प्राकृतिक खेती है इसमें इतना सारा संरक्षण, कहीं ना कहीं मृदा संरक्षण है, जल संरक्षण है और जो प्रदूषण जो हो रहा है इससे भी बचा जा सकता है, पर्यावरण का संतुलन रहेगा। इतनी अच्छी जानकारी आज आपने प्राकृतिक और जैविक खेती द्वारा उर्वरक लागत में कमी पर दी है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभान्वित और पूरी प्रकृति की गोद में कहीं ना कहीं एक खिलता हुआ स्वास्थ्य हम देख सकते हैं यदि हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ अमित, अब जो है समय हो चला है विदा लेने का, सभी सुनने वालों को
2: नमस्कार,
1: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगतोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब से कुछ देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जेमिनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज। द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
3: क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Azha. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heatwave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today, with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं प्रियांशी भटनागर आपके साथ कार्यक्रम मन भावन में। हमारे सभी अजीज श्रोताओं को ईद अल अजहा की भी मुबारकबाद। तो आज हवाओं में एक रौनक है और दोपहर की इस लय में आपके मनपसंद गीतों की सुरीली माला के साथ मन भावन समर्पित है उन भावनाओं को, उन यादों को जो हर गीत के साथ फिर से मुस्कुरा उठती हैं। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और अपने संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो, कोई छोटा सा संकल्प या स्नेह भरा संदेश अपने मनपसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, हमें भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपने नाम और शहर के साथ। हमारा ईमेल पता है fmgoldair@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868886875 पर।

मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, ईमेल है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं 9868886853 यानी 9868886853 पर। क्या पता कहीं अगला मनभावन पल आपके ही पसंद से सजे।

संगीत की इस रोमांचक लहर के बाद आइए अब देखते हैं आपने हमें क्या क्या संदेश भेजे हैं और कौन कौन लिख रहा है। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका हमें लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता भी जुड़े हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव से डॉ डब्ल्यू अंसारी, डॉ सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं। इनकी फरमाइश पर चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी ने ईद मुबारक कहा है हमारी सभी श्रोताओं को और अपना फरमाइशी गीत भेजा है, तो आइए सुनें।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइशों में एक गीत बार बार आया है, अगला गीत वो ही सुनवाते हैं आपको। फिलहाल आपके संदेश भी पढ़ लेते हैं। अनिल मोहन जी, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक ने भी इसी गीत की फरमाइश की है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, इन्होंने भी अपना फरमाइशी गीत भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और अपना गीत भी लिख भेजा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा और जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान और आबाद भी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है। और अनीता वर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ दिल्ली पीतमपुरा से। प्रहलादपुर गांव से, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अब कहां से लिख रहे हैं ये तो लिखा है पर आपका नाम नहीं मिल रहा, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं गीत मुझे मिल गया बहाना, लता जी की आवाज में।

तो आइए श्रोताओं, अब एक बार फिर आपके संदेश पढ़ें। फाजिल्का पंजाब से ओम बगड़िया क्रियांश और योगेश जी ने लिखा है हमें संदेश, रजत और बेबी करिमा के साथ। दिनेश सोलंकी जी लिख रहे हैं राजस्थान से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष के साथ लिख रहे हैं हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। अगला गीत और संदेश हमें मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी का, जिला खरगांव सनावत मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र जी और राजकुमार बुराना जी और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये मधुर गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में, आप सभी के मनपसंद

गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है तो जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर fmgoldairdelhi@gmail.com पर, वरना हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं 9868687533 यानी 9868687533 पर। तो श्रोताओं, आइए अविलंब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आपके भेजे हुए इस गीत के साथ।

गीतों की इस मधुर छाप के बीच आइए अब शामिल करते हैं आपकी बातें आपकी शहरों की खुशबू के साथ। देखते हैं आज और किन श्रोताओं ने हमें अपनी मन की बात लिख भेजी है। अलीपुर दिल्ली से मोनू पराशर जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमें लिख रहे हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया जी, इनके साथ हैं एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं हमें हिसार से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम जी, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा हमें लिख रहे हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का। ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। इन्होंने भी अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है महेश बुहाड़ा जी।

गीता अजमेर राजस्थान से। सभी श्रोताओं और समस्त देशवासियों को ईद मुबारक लिखते हैं और अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है, आइए सुने। फिल्म दुल्हन एक रात की और आवाज है रफी साहब की।

संगीत ने तो माहौल सजा दिया, अब आइए आपके संदेशों में भी छिपी भावनाएं पढ़ें। कोलगांव से पांडु चंदन जी, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडु रंग कुंभार जी ने हमें संदेश लिख के भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहारी कॉली नई शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशवर धान खुराना, इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है और अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष ने भी हमें अपना मनपसंद गीत लिख भेजा है। संदीप मकर जी ने हमें संदेश भेजा है, ज्योति मकर जी के साथ, इनके साथ हैं मन्नत, भरत, कमल साहनी,

लिख रहे हैं हमें पिंगावाला चौक जालंधर से। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। फैज अहमद शाकिर और सबीर ने हमें संदेश लिख भेजा है, कर्नाटक से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत धन्यवाद। मंगल वेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम हमारे साथ जुड़े हैं। राजौनी जिला महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और सभी परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। अग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से। और संदेश हमें प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवाकर हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं निर्मला विशाल। और मकलापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहेरकर हमारे साथ जुड़े हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आयसा, जोया और जैनब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये गीत आप सभी की फरमाइश पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से एक रेडियो में युवावाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यह जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में। आखिरी चरण है कार्यक्रम का, तो चलिए आपके संदेश भी जल्दी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। छीपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री जुड़े हैं हमारे साथ। दिग्दर्शन और कविता गौर जुड़े हैं मेरठ कैंट से। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू जुड़े हैं उत्तराखंड से।

राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेनू दिव्यांशी आराधना रौनिका चंद्रेश ये जुड़े हैं हमारे साथ जयपाल यादव जी और इंद्रपाल यादव जी के साथ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर। ऐसे ही संदेश भेजते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। येसुदास जी के इस गीत के साथ प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केन्द्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136

0: 36 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय धानसभा की सभी 107 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का आज विमोचन करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has formally submitted his resignation to the Governor's Secretary at Lok Bhavan today. Addressing media, he confirmed that the resignation letter was officially handed over to the Secretary. Mr. Siddaramaiah said he requested the Governor to invite the Chief Minister designate to assume office, as his government enjoys an absolute majority in the Assembly with the support of over 136 MLAs. The Chief Minister Designate, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, is one of the senior leaders of the Karnataka Congress. He played a key role in the Congress Party's victory in the 2023 Karnataka Assembly elections. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Azha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of ntacuet.nta.nic.in. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and his newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. President Draupadi Murmu has urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and the children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of Sikkim Police in maintaining law and order and in disaster management.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं। तो चलिए सुरों के सिलसिले को जारी रखते हैं, सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के सुरों में ये गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DLD ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DLD ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

पिघलाते इसके धा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी।

0: monthly remuneration of 40,000 rupees as per ministry guidelines. Detailed vacancy circular, eligibility conditions and the application information is available on the ministry's website under the recruitment section. The last date for receipt of applications is 21 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to www.moef.gov.in. National Human Rights Commission, NHRC, has invited applications from eligible young professionals for empanelment as junior research consultants on a contractual basis. Candidates with an LLB degree or postgraduate qualification in social science, such as political science, sociology, international relations, social work, human rights, or development communications, with a minimum of 60% marks are eligible to apply. The Commission seeks candidates with sound research aptitude and practical understanding of human rights issues. Detailed guidelines and terms of engagement available on the official NHSRC website. And the last date for applications is 9th June 2026. For details, do refer to www.nhrc.nic.in, or you could also go on to www.hrcnet.nic.in. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, Government of India, has invited applications from eligible officers of the central government, state governments, union territories, autonomous or statutory organizations, public sector undertakings, universities and recognized research institutions for filling up the post of photographic officer on deputation basis. Details regarding pay scale, qualification, eligibility conditions and application format is available on the Academy's official website under the vacancy section at www.svpnpa.gov.in. I repeat, it is www.svpnpa.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत सक्रिय रामपुर रजा लाइब्रेरी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार एक पद, लेखा सलाहकार एक पद, प्रशासनिक सलाहकार एक पद, शोध सहायक हिंदी एक पद, शोध सहायक संस्कृत दो पद, टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी एक पद और टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर अंग्रेजी एक पद। उम्मीदवार केवल स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा अपना आवेदन इस पते पर प्रेषित कर सकते हैं। निदेशक रामपुर रजा लाइब्रेरी, हामिद मंजिल, किला रामपुर, उत्तर प्रदेश 244901। आवेदन करने से पहले आवश्यक योग्यता, वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार 23 से 29 मई के अंक को। विकास आयुक्त कार्यालय कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अप्रेजिंग अधिकारी ग्रुप ख राजपत्रित। पदों की संख्या 2 है और कार्यस्थल रहेगा गांधीधाम। योग्यता, अनुभव, वेतन और भत्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विकास आयुक्त कार्यालय कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की वेबसाइट www.kaseez.gov.in। किसी भी तरह की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो ईमेल का पता है admin.kaseez-gj@gov.in। फोन नंबर पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर है 02836252225।

0: 2-7-3। सेना मुख्यालय उत्तरी कमांड में आशुलिपिक ग्रेड 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या 8 है और तैनाती का स्थान रहेगा उधमपुर। आवेदन प्रारूप, पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए भारतीय सेना की वेबसाइट indianarmy@nic.in। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक इस पते पर पहुंच जाएं। पता है प्रशासन शाखा मुख्यालय उत्तरी कमांड, पिन 908545, CO 56 APO। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक महाप्रबंधक ग्रुप ए, एक पद अनारक्षित। सहायक प्रबंधक ग्रुप बी, दो पद अनारक्षित। सहायक प्रबंधक कृषि ग्रुप बी, एक पद अनारक्षित। योग्यता, भर्ती संबंधी शर्तों, अनुभव और वेतनमान के लिए देखिए APEDA की वेबसाइट www.apeda.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 22 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: कोटि कोटि कंठों से गूंजा प्यारा कौमी नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मंदिर और मीनार हमारे, गांव शहर बाजार हमारे, चंदा सूरज गंगा जमुना, पैगंबर अवतार हमारे। नमस्कार। आज ईद उल अजहा के अवसर पर प्रतिष्ठित कवि गोपाल दास व्यास की पुण्यतिथि पर उनकी लिखी पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
4: हेलो प्रियंका।
3: और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में रोज की तरह बहुत कुछ रहेगा खास। क्षेत्रीय संवाददाताओं से हम रूबरू होंगे, खेल जगत की गतिविधियां भी जानेंगे और आज जिन व्यक्तियों ने हमसे अलविदा कहा, जयंती हैं, जिनका जन्मदिन है, उनको भी हम याद करेंगे।
4: यस, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 FM Gold। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट प्रियंका अरोरा।
3: अभिषेक, ये धुन बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही है।
4: Absolutely, well, listeners is known for creating the character of James Bond, the confident, sophisticated and daring secret agent. Secondly, his background as a commander in Britain's naval intelligence during World War II gave his books a vital ring of truth, providing realistic detail. And lastly, having worked as a journalist for Reuters, he developed a quick, vivid and unmannered writing style. His scripts, journalistic prose, made his thrillers effortless, gripping page-turners. Yes, he's none other than the author of the James Bond series of spy novels, Ian Fleming.

0: Yes, and Ian Fleming observes his birth anniversary today. We shall talk about him later in a program. But first, we start off with the news headlines at this hour.
1: जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया.
0: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एश्योर्स रेजोल्यूशन ऑफ ऑल ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन सीबीएसई क्लास 12 एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन प्रोसेस. कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर सेक्रेटरी एट लोक भवन.
1: होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ. ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.
0: एंड इन बैडमिंटन पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन स्टॉर्म इनटू द सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स ऑफ सिंगापुर ओपन. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day of Action for Women's Health and World Menstrual Hygiene Day. Well, every year on May 28th, the International Day of Action for Women's Health is celebrated to remind us that women's health is not merely a women's issue. It is a social, economic and human rights issue that affects families, workplaces, communities and entire nations.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक. और खासकर जब महिलाओं की बात करें तो घर में वो सबकी देखभाल करती हैं, लेकिन अपनी देखभाल करना भूल जाती हैं.
0: It's very important that the woman of the house take care of her health, because only when she's healthy, the rest of the family is well and happy, isn't it?
1: बिल्कुल, उनके कंधों पर ही पूरा घर चलता है. इसलिए आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी. प्रजनन स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन से लेकर पुरानी बीमारियों की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य तक ये दिन इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान, करुणापूर्ण देखभाल और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक निरंतर पहुंच की आवश्यकता है.
0: And every year, International Women's Health Day 2026 is guided by a unified message. The topic for Women's Health Day in 2026 is to empower women with information, ensure fair access to healthcare services, and encourage preventative health habits across all age groups.
1: जी हाँ, ये विषय इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि किस प्रकार जानकार महिलाएं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और समग्र रूप से अपने समुदायों के लिए अधिक स्वस्थ विकल्प चुनती हैं.
0: Yes, Priyanka, and unlike men, women go through a distinct series of biological processes, including menstruation, pregnancy, childbirth, and menopause, each with its own set of health concerns.
1: जी हाँ, और जितना ये शारीरिक रूप से तकलीफ देता है, उतना मानसिक रूप से भी ये जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो menstruation की है, pregnancy की है, परेशान करती हैं. प्रजनन स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑटोइम्यून विकार, थायराइड रोग है और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियों का भी अलग अलग स्तर का जोखिम रहता है. जीवन के सभी चरणों में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं.
0: एंड सो कमिंग अप फॉलोइंग आर द क्रिटिकल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज एडवोकेटेड शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंट गायनोकोलॉजिकल चेकअप्स.
1: जी हाँ, नियमित मेमोग्राफी और स्तनों की स्वयं जांच करवाएं, हड्डियों के घनत्व जिसे बोन डेंसिटी करते हैं उस पर नजर रखें. खासकर विशेष रूप से हम बात करें तो 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को नियमित तौर पर रेगुलरली अपना जो स्वास्थ्य चेकअप है वो करवाना चाहिए.
0: मेंटेन अ बैलेंस डाइट हाई इन कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड. Perform at least 150 minutes of moderate physical activity per week.
1: और पर्याप्त आराम, सामाजिक जुड़ाव, जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद के जरिए मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें. डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड की कार्यप्रणाली की नियमित जांच करवाएं.
0: And today Priyanka also happens to be the menstrual hygiene day observed every year on May 28th, and the day is supported by an expansive coalition of over 1,315 global partners, including UNICEF, World Health Organization WHO, World Bank Group, United Nations Population Fund.
1: जी अभिषेक, ये दिन मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य, गरिमा, शिक्षा, सुरक्षित पीरियड जो चीजें होती हैं उस तक पहुंच और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को समाप्त करने पर केंद्रित है.
0: And did you know the date itself has a special meaning?
1: बिल्कुल, मई साल का पांचवां महीना है जो मासिक धर्म की औसत अवधि का प्रतीक है, जो लगभग 5 दिनों की होती है.
0: एंड द डे रिप्रेजेंट्स द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज अ सिंपल बट पावरफुल रिमाइंडर ऑफ समथिंग दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल.
1: बिल्कुल. मासिक धर्म स्वच्छता दिवस खुली बातचीत को बढ़ावा देता है ताकि मासिक धर्म से गुजरने वाली हर महिला किशोरी अपने पीरियड्स को सुरक्षित आत्मविश्वास के साथ और गरिमापूर्ण ढंग से संभाल सके.

0: And sadly, Priyanka, many people still face shame, misinformation and lack of access to proper hygiene products and education.
1: बिल्कुल, अब भी हमारे समाज में अभिषेक इसको लेकर टैबू है, इस पर बातचीत करने से कतराते हैं. तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अब ये सोशल इशू है और स्वास्थ्य से जुड़ा इशू है, तो इस पर खुली चर्चा, बातचीत पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी होनी चाहिए. इसलिए जागरूकता जरूरी है. महामारी के बारे में खुलकर बात करने से गलत फहमियां दूर होती हैं और एक ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा मददगार समाज बनता है.
0: एंड गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑल्सो मीन्स यूजिंग सेफ प्रोडक्ट्स, चेंजिंग देम रेगुलरली, मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड साइकिल.
1: बिल्कुल, याद रखें पीरियड्स कोई वर्जित विषय नहीं है, ये जीवन और स्वास्थ्य का एक सामान्य हिस्सा है.
0: सो टुडे लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस, सपोर्ट डिग्निटी एंड एनकरेज कॉन्वर्सेशंस विदाउट फियर और एम्बैरेसमेंट.
1: जी हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ है, पीरियड्स एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है और इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है. पीरियड से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ने की शुरुआत सीधी सादी बातचीत से होती है. जब हम खुलकर बात करते हैं, खुद को जागरूक करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम एक ज्यादा सुरक्षित और समझदार समाज का निर्माण करते हैं. पीरियड से जुड़े मिथकों को तोड़ने और इस विषय पर चुप्पी खत्म करने में माता पिता, शिक्षक, स्कूल, कार्यस्थल और समुदाय सभी की अहम भूमिका होती है.
0: Yes, and so to wrap up our discussion on the International Day of Action for Women's Health and World Menstrual Hygiene Day, well, Priyanka, no girl or woman should ever feel embarrassed for something that is a natural part of life. Access to menstrual hygiene, healthcare, education and dignity should be a basic right for everyone. And let us replace shame with awareness, fear with knowledge and silence with support. Because when we normalize conversations about menstruation, we empower people to take better care of their health and well-being.

0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का। आज ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताज उल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। इस पर खास
1: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है।
2: Yes, and moving on, the Bharat Taxi customer app was recently soft launched in Mumbai. The onboarding process for drivers for this app began a little over a month ago, and now its customers app is available to lakhs of commuters in the financial capital of India. We have more from our Mumbai correspondent.
3: Bharat Taxi is India's first cooperative-led, driver-owned platform which promises transparent fares, reliable and safer rides, and zero commission. But how is it different from various mobility giants already in the market? To answer this, we have with us the Chief Operating Officer of Bharat Taxi, Vivek Pandey.
4: Here we have a structure where individual drivers can become shareholders. We will be always zero commission and we'll only be charging a small subscription fees. Since we are not charging a high commission, which other aggregators like do, which is around 20-30%, we'll be able to pass on more to the driver and still charge less to the consumer. The other benefits which are

0: countries, then Filmfare, then Screen Award, and now Screen Writers Association Award. It feels even better because for the first time we were competing with the giants of the industry, and to rise as winners amongst them is really a great feeling.
1: The success of the film has also highlighted the contribution of regional talent to Indian cinema and international storytelling platforms. The recognition received by Stolen is being seen as significant achievement for independent cinema and a proud moment for Goa's creative and film community. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Parji.
2: और अब खेल मैदान की हलचल। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
3: एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिमेन क्लोज टू ऑन अकाउंट ऑफ बकरी ईद। Trading in equities, equity derivatives, securities lending and borrowing, currency derivatives and interest rate derivatives also remain shut for the day on both the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. Meanwhile, trading in the commodity segment remained closed in the morning session. However, it will resume in the evening session at 5 p.m.
2: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।

और अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ, उर्दू अदब की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी को अपनी गजलों में नई आवाज देने वाले मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। आम आदमी के शायर बशीर बद्र का जन्म अयोध्या में 15 फरवरी 1935 को हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने 7 बरस की उम्र से ही शेर व शायरी शुरू कर दी थी। बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता और सहजता है। उन्होंने गजल में ऐसे रोजमर्रा के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया जिन्हें पारंपरिक उर्दू शायरी में जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी जिनमें इमखान, आहटे, कुलियाते बशीर बद्र और उजाले अपनी यादों के शामिल हैं। उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया और उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और उनकी पंक्तियां जैसे एक दिन तुझसे मिलने जरूर आऊंगा, जिंदगी मुझको तेरा पता चाहिए, या ये कितनी प्रचलित रही थी अभिषेक कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो आइए सुनते हैं उनकी कलम से लिखी हुई ये गजल।

0: and Maya Angelou passed on this day in 2014. She was a globally celebrated American memorist, poet, and civil rights activist whose work profoundly shaped 20th century literature. She is best known for a series of 7 autobiographies that chronicle her early life, exploring complex themes of racism, oppression, resilience, and identity. As a prominent cultural figure, Angelou was revered for a powerful mastery of language, an unwavering dedication to social justice. And I Know Why the Caged Bird Sing in 1969 was a groundbreaking first memoir. It details a childhood in the segregated South and became the first non-fiction bestseller by an African-American woman.
1: जी हाँ, आज ही के दिन निधन हुआ था जाने माने साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास का। उन्हें व्यंग्य विनोद की नई धारा का जनक माना जाता है। उन्हें ब्रज भाषा का विद्वान भी कहा जाता है। अगर आप उनकी कविताएं पढ़ें तो उसमें हर रंग और हर रस मिलता है, फिर चाहे वो हास्य रस, व्यंग्य रस, वीर रस या कोई अन्य कविता हो। और जैसे अगर बात करें तो गोपाल प्रसाद व्यास की वीर रस से लेकर परिवार रस की कविताएं जैसे परमेश्वर, मानो, साला साली और ससुराल चलो जैसी कविताओं को कौन भुला सकता है। उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है और आपको पता है कि वे हास्य रस अवतार के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे में उनकी लिखी पंक्तियों के जरिए इसकी वानगी पेश की जाए। उनका कलम उन्हें लौटाया, धन्यवाद जी। पत्र लिखा तो उत्तर आया, धन्यवाद जी। छायावाद, रहस्यवाद तो बहुत सुने थे, किंतु कहां से आ टपका ये, धन्यवाद जी।
0: Absolutely, dhanyavad, and for that very lovely recitation, Priyanka. And now, moving on, Ian Fleming was born on this day in 1908. He was a prominent British author, journalist, and naval intelligence officer. Like your listeners will remember, we mentioned in the beginning of our program, and is universally celebrated as the creator of James Bond, the iconic Secret Service agent 007, who became a central figure in the 20th century pop culture. And talking about the birth of 007, Priyanka, Fleming wrote his first spy novel Casino Royale in 1952 at his Jamaican estate named Goldeneye. He penned a total of 12 novels and 2 short story collections featuring Bond, selling over 100 million copies worldwide.
1: और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म नासिक में विख्यात हिंदुस्तानी संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर के घर हुआ था। और उनके गायन की ये वानगी पहले आपको सुनाते हैं।

और आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान को, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। जी हां, महबूब खान वही हैं जिन्होंने मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्म बनाई थी। हम जानते हैं कि इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसके अलावा उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में थी जिसका जिक्र करें, उनमें अनमोल घड़ी, आन, अंदाज शामिल है। और जाते जाते अनमोल घड़ी का ये शानदार गीत आपको सुनाते चलते हैं।

जी हाँ, अब हम भी उड़ चलते हैं। अभिषेक समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो प्रियंका अरोड़ा और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केन्द्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 को संशोधित तिथियां और

0: प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah formally submitted his resignation today. Addressing media, he confirmed that the resignation letter was officially handed over to the Governor's Secretary in Bengaluru. Mr. Siddaramaiah said he requested the Governor to invite the Chief Minister designate D.K. Shivakumar to assume office as his government enjoys an absolute majority in the Assembly with the support of over 136 MLAs. The Chief Minister designate, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, is one of the senior leaders of the Karnataka Congress. He informed that the High Command had offered him a Rajya Sabha seat, which he added he had humbly refused. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Tests undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examination will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that the admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. Addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth Rs. 340 crore in the Gandhinagar Lok Sabha constituency of Gujarat today, Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country.
2: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
3: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
1: President Draupadi Murmu has urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with the vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim Police in maintaining law and order and in disaster management.
4: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: In a significant development for wildlife conservation in Gujarat and Kutch, four cheetahs from Madhya Pradesh will be relocated to the Banni grasslands in Kutch. The National Tiger Conservation Authority, NTCA, and the Cheetahs

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ढलती हुई शाम, चाय की प्याली और यादों का एक खूबसूरत कारवां, जहां लव्स दिल की गहराइयों से निकलकर रूह को छूने लगते हैं। मैं प्रियांशी भटनागर अभिनंदन करती हूं हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। श्रोताओं, कहते हैं कि गजल सिर्फ एक विधा नहीं बल्कि जज्बातों की मुकम्मल जुबां है, जहां खामोशियां भी गुनगुनाने लगती हैं और बीता हुआ वक्त एक सुरीली दास्तां बनकर सामने खड़ा होता है। तो आइए आज की इस खूबसूरत शाम को और भी हसीं बनाते हैं। चलते हैं 80 के दशक के उन सुनहरे और सदाबहार नगमों के सफर पर, जिन्होंने जिंदगी को मोहब्बत के रंग में रंग दिया था। शुरुआत करते हैं फिल्म बाजार के मीर तकी मीर साहब की गजल से। खयाम साहब की अमर मौसिकी और लता मंगेशकर की मखमली आवाज में सुनिए ये बेहद खूबसूरत गजल।

शहरयार की कलम, खयाम साहब की रूहानी धुन और तलत अजीज की मखमली आवाज से सजी फिल्म उमराव जान की ये नायाब गजल जो सीधे रूह में उतर जाती है। आइए सुनते हैं, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें।

श्रोताओं, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे जल्द ही वही मधुर सुनहरी धुने लेकर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई।

0: डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रुक कर बहती धुनें जब फिर से जुड़ती हैं तो मन जैसे अपने आप मुस्कुरा उठता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर एक गीत आपके लिए

समय ने इशारा कर दिया है तो अब मुझे दीजिए इजाजत। यादों का ये हंसी कारवां भले ही यहाँ ठहर रहा है, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, यादों के झरोखे से निकली संगीत की ये सजल सांझ अब आपसे विदा ले रही है। आज जो सुर इस आंगन में गूंजे हैं, आशा है कि कल वे आपकी तन्हाइयों में भी बेहद खूबसूरती से गुनगुनाएंगे। सुरों के अगले कारवां की दस्तक तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ईद उल अजहा की आप सभी को मुबारकबाद और प्रियांशी भटनागर का आपको सस्नेह नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के

आज 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये वक्त है सदाबहार गीतों का और सदाबहार गीतों में अब आपके साथ है विभा। नमस्कार।

फिल्म कश्मीर की कली से ये दिलकश गीत सुना आपने आशा ताई और रफी साहब की आवाज में। और अब सुनिए फिल्म लीडर से हमारा अगला सदाबहार नगमा लता दी और रफी साहब की आवाज में। कौन सा है लीजिए, पहुंचा रही हूँ आप तक।

0: अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रांतरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। होर्मुज जलडमरू मध्यस्य समीपे आक्रमणान्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्तितः। गृहमंत्री अमित शाहः गांधीनगरे जनसभायां अवैध प्रवासीनां देशात् निष्कासनार्थं सर्वकारस्य दृढसंकल्पं पुनः प्रत्यपादयत्। अपि च बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पीवी सिंधुः तथा च लक्ष्य सेनः सिंगापुर ओपन इत्यस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इत्यसौ अद्य लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् संबोधयन् सः स्वयं प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारं ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिक एकशतात् अधिक विधायकानां समर्थन सहचारेण कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजतीना स्वकीयं अरुचिं प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् सः राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। सिद्धरमैया इत्येषः 23-2000 वर्षे द्वितीयवारं कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री संजातः। इतः पूर्वं सः 23-18 यावत् मुख्यमंत्रित्वेन कार्यम् अकरोत्। सः राज्ये 8 वर्षाणां कार्यकालद्वयं पूरयित्वा सर्वाधिक समयमुपविशता मुख्यमंत्रित्वेन गौरवम् अर्जितवान्। मुख्यमंत्रित्वेन वित्तमन्त्रित्वेन च तेन राज्यस्य 17 आयव्ययकानि उपस्थापितानि। तस्य त्यागपत्रेण राज्ये सुदीर्घकालतः जायमानः सत्तासंघर्षः समाप्तः। अत्रान्तरे राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारः कर्णाटक कांग्रेस दलस्य वरिष्ठतमेषु नेतृषु कश्चन प्रमुखः अस्ति। 23-2000 विधानसभानिर्वाचने कांग्रेस दलस्य महत् विजये तेन प्रमुखा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बल वर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोकनगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय संबोधितवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस

0: को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: अत्रांतरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यम् आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोक नगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता, यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासीनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिंशत कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय षट्शतं हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाह अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणां उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य सीबीएसई इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मन्त्रणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ़ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मंच वर्तते। सः नवदिल्ल्यां सीबीएसई अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत, तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: पूरे ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, पीवी सिंधुः, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिल तनीसा क्रेस्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु

0: Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: थैंक यू।
1: चर्चा प्रारंभ करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुनते हैं सुर्खियां।
0: Most Asian stock indices end in negative zone. Global crude oil prices climb amid renewed geopolitical concerns. And in Indian bullion market, gold and silver prices decline.
1: प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। भूराजनीतिक चिंताओं के बीच वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े और भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम घटे।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.8%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% से अधिक, वहीं जापान का निके 0.5% गिर गया. उधर चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.1% से अधिक बढ़ा. वहीं बैंक ऑफ कोरिया ने आज अपनी मानक ब्याज दर को 2.5% पर अपरिवर्तित रखा. केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति बोर्ड के 7 सदस्यों में से 5 ने इस दर को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 असंतुष्ट सदस्यों ने वृद्धि के पक्ष में मतदान किया. केंद्रीय बैंक ने पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने से पहले अनुमानित 2.2% मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित करते हुए इस वर्ष के मुद्रास्फीति अनुमान को 2.7% कर दिया है, जिसमें तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभावों को भी ध्यान में रखा गया है. इसने इस वर्ष के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 2.6% कर दिया है, जो फरवरी के 2% के अनुमान से काफी अधिक है. बात करें अगर यूरोपीय सूचकांकों की तो यहां भी गिरावट देखी गई. लंदन का फुटसी 1.1% से अधिक, जर्मनी का डैक्स 0.7% से अधिक, जबकि फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% से अधिक नीचे कारोबार करता नजर आया.
0: मेजर यूएस स्टॉक इंडेक्सेस क्लोज्ड एट रिकॉर्ड हाइज यस्टरडे. द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज गेन्ड नियरली 0.4% टू क्लोज एट 50,644. The Nasdaq Composite Index rose marginally

0: लेकिन पिछले 3 दिन के अगर हम एक एक ट्रेंड को अगर देखें तो सोमवार को 174 अंक से बाजार ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे थे, करके बंद हुए. हमने मंगलवार को देखा कि 76 पॉइंट्स मार्केट्स में डाउन, और बुधवार को हमने देखा फिर 142 पॉइंट्स. तो इस ट्रेंड को आप बाजार की रूपरेखा को इन आंकड़ों की मार्फत से कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जो हो रहा है वो एकदम जो विश्व में जो ये जो तनाव चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा आपको
0: जी.
1: अगर सोमवार को मार्केट चढ़ा
0: जी,
1: उस समय ये लगा कि एक एग्रीमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है, यूएस और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली हो जाएगा
0: जी,
1: और जहां से अभी सिर्फ 30 जहाज निकल रहे हैं वहां पे करीबन आज से 140-150 जहाज जो निकलने का नॉर्मल जो ट्रेंड है वो आ जाएगा. उससे विश्व में जो तेल की जो मार्केट है उसमें एक स्थिरता आएगी, उसमें एक दामों में नरमी भी आएगी. तो उस दिन मंडे में क्रूड ऑयल प्राइस भी नीचे आए और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट भी ऊपर चले गए. मंडे को ये लगा कि इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है, और वेंसडे को भी उसमें रिटेलिएशन हुआ और यूएस ईरान के साथ कुछ. तो मैं ये समझता हूं कि ये समय ऐसा है जहां पे यूएस और ईरान की जो हलचल से ये मार्केट में इम्पैक्ट हो रहा है. आपको इस समय अगर मार्केट में को ये देखना है कि आप उसी मार्केट उसी स्क्रिप्ट्स के साथ डील कर सकते हैं जहां पे आइदर वो अंडरवैल्यूड है, जैसे कि अगर आप मिड कैप जो इंडेक्स जो हैं या स्मॉल कैप के जो हैं वो काफी इस वक्त अंडरवैल्यूड हैं. उसी लिए हालांकि मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे कल मार्केट नीचे आया था, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदी हुई थी और दाम उनके बढ़े थे क्योंकि वो अभी भी पिछले जो डाउनसाइड आया था उसमें काफी नीचे आ गए थे. तो और लार्ज कैप जो है वो सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म है. अगर आप लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं, करीबन 18% की नेट प्रॉफिट वृद्धि. मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आया होगा. तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को देखें तो मार्केट में अभी भी जूस है, पर ये सारे जूस इधर उधर चले जाते हैं. अगर आप वैश्विक में जो तनाव जो चल रहा है वो तनाव ऊपर जाता है, और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो अमेरिकन बॉन्ड मार्केट जो है
0: जी,
1: वो हमारी देश से इमर्जिंग इकोनॉमी से जो विदेशी जो मुद्रा के जो निवेश हुए हैं वो किस तरह से उधर ले जा रहा है
0: जी.
1: अगर आप करीबन देखें तो पिछले 2 सालों में करीबन $80 बिलियन का जो निकासी हुई है हमारे देश से चली गई है
0: जी.
1: इसका जो प्रभाव जो पड़ता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में वो काफी जोखिम भरा हुआ है, काफी उसको हमें संभालना पड़ेगा, और इसीलिए मार्केट में इतनी नर्वसनेस अभी भी हमें देखने को मिल रही है.
0: महोदय, क्योंकि आपने वैश्विक परिपेक्ष के संदर्भ में बात की है, बाजारों का आपने एक विवरण दिया है, तो एक आम श्रोता, एक आम दर्शक जो बाजारों को बहुत करीब से देख रहा है या जो सुर्खियों पे देख रहा है, क्योंकि आम जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को नहीं समझते, ऊपर ऊपर से समझते, तो मैं चाहती हूं कि मेरे एक आम श्रोता के लिए आप इस चीज की कड़ी खोलें कि इस तरीके की जो चिंताएं जो पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उत्पन्न हुई है उसने बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की नींव हिला के रख दी है. तो ऐसे में भारतीय बाजार को हम एक पहलू पर देखते हैं और दूसरे पहलू पे हम देखते हैं यूएस मार्केट को, देखते हैं हम एशियन मार्केट को देखते हैं, तो एक दोनों तरफ जो है, एक तरफ लाल और एक तरफ हमें हरा नजर आता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है?
1: देखिए, जो हम ये नहीं कह सकते कि जो भारतीय अर्थनीति का जो नींव जो है
0: जी,
1: वो ये जो तनाव चल रहा है विश्व में
0: जी,
1: उसे पूरी तरह से इम्यून रहेगा, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते. अगर आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स, वित्त मंत्री के स्टेटमेंट या आरबीआई गवर्नर साहब का स्टेटमेंट अगर आप उसको अगर छानबीन क्लोजली अगर देख

0: the rising bond yields. Is it time to come to do something on the interest rate front or not?
1: महोदय, एक बहुत ही मौलिक सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि आप तो अवलोकन करते हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, आप आने वाले समय को जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं. तो एक व्यक्ति जो अपने घर परिवार को चला रहा है, आने वाले समय को देखते हुए आप फाइनेंशियल लेवल पर उसे क्या राय देना चाहेंगे?
0: मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं आर्थिक पत्रकार हूं.
1: आर्थिक पत्रकार जी.
0: मेरा यही इस समय उनको एडवाइस ये होगा कि ये समय नहीं है कि स्टॉक मार्केट से खिलवाड़ करें. ये समय ये है कि सिक्योर लार्ज कैप या डेट लेवल में जुटे रहें और रिस्क जो का जो एक टेंडेंसी जो नॉर्मली जो मार्केट में जो लोगों का होता है, ये समय नहीं है कि रिस्क को एक्सप्लोर करने का.
2: ओके, सिंस वी टॉकिंग अबाउट इंडिया, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. इज बिकमिंग एक्चुअली क्वाइट मोर होम ड्रिवन. Right, AKB. With domestic consumption stepping into the lead role, supported by tax relief, relief when it was announced, with 1.5 trillion in households' hands. So my question is consumption alone a strong enough engine to sustain market momentum if global headwinds intensify further?
0: Consumption will take us up to your point.
2: Okay.
0: You need to get investment into the game, and that is where the real problem is arising. Right now, the domestic investment was not doing enough, and foreign investment and the government's investment was meeting that gap.
2: Okay.
0: But time has come that we cannot just be happy and reliant on the consumption story keeping the growth engine revving. We need to make sure that the investments also kick in, and which is why there's a little bit of concern that why is that India Inc. not investing enough? Why is it that the foreign companies should not? You know, there is in the gross level, gross foreign direct investment is good, over $90 billion or something like that. Now, but the question is, the in units which are already in the market, they are pulling out their money either through disinvestment or through repatriation, and even Indian companies, they are going out and investing abroad. So as a result, the net addition to your balance of payments from the capital side is not much. In brief, the real challenge today is not a current account challenge. The real challenge is a capital account challenge, because that is where the deficits are showing up.
2: Okay.
0: Current account deficit, to be frank, even if from 1% of GDP, it doubles to over 2% of GDP. Remember, the current account deficit in 2012-13 used to be 4% of GDP. So that was the current account problem. But today, it is not the current account problem. The problem is arising out of capital flows in and out.
2: Okay. Indian stock markets remain closed today on account of Eid al-Adha. Trading in equities, equity derivatives, securities, lending and borrowing, and interest rate derivatives also remain shut for the day on both the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. Yesterday, the BSE Sensex dropped 142 points to close at 75,868. The NSE Nifty ended on a flat note, marginally down by 7 points to settle at 23,907 after a choppy trade.
1: श्रोताओं, बकरीद के उपलक्ष्य में आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा. पिछले सत्र में रुपया एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.70 रूपये पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 99.37 पर चल रहा था. अन्य खबरों में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है. नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3%

0: ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। श्री सिंह ने बताया कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने ये भी बताया कि देश ने तिलहन उत्पादन में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष तिलहन की उपज 43 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का ये सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सहायक होगा।
1: ब्रीफली, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
2: वेल, आई थिंक दिस इज द बिग डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ द क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग टुडे। You know, good old days, let's take the 1970s, the oil crisis, or the 1990s oil crisis. Particularly in the 1970s oil crisis, our food self-sufficiency was a big question mark. So today, the three Fs that the finance minister talked about, there is no food. There is fuel, there is fertilizer, there is foreign exchange. So the big change that has happened now is this, that on the food self-sufficiency, we are not impacted at all. On the contrary,
1: 5.3% higher than last year.
2: And the government is confident of meeting its national food security obligations in the current year as well.
1: Okay. Moving on, the 12th round of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, ICE-SEPA, upgrade negotiations were concluded in New Delhi. The Ministry of Commerce and Industry said that during the meeting, both sides reviewed the progress achieved so far in the ICE-SEPA upgrade negotiations. The Ministry also said that it has decided to constitute subgroups to discuss cooperation in the areas of digital trade, supply chain cooperation, and strategic industrial cooperation in the meeting. Both sides also acknowledged India's bilateral trade deficit, which has risen significantly since the SEPA came into force in 2010, and agreed to address the issue within the overall ICE-SEPA framework. Global crude oil prices rose today after Iran and US exchanged direct military strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. Brent crude was trading more than 2.9% up at $97.08 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 3% higher at $91.34 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.2% down at 1,54,540 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.6% lower at 2,62,350 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 1.2% की गिरावट के साथ 1,53,785 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1.7% घटकर 2,61,691 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। भट्टाचार्य जी, सोने और चांदी के दाम जो कि सबके लिए बहुत ही जनरुचि का विषय है जानना, इस पर मैं आपके टिप्पणी।
2: देखिए, जो हो रहा है इस वक्त कि सरकार ने जो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स जो है टैक्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी थी, और जो मार्केट में जो इनका जो दाम घटने का जो आप देख रहे हैं वो उसका भी एक प्रतिफलन है। और दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट में भी थोड़े बहुत पैसे जा रहे हैं इस वक्त। सोने एंड चांदी में का जो दाम नीचे आना थोड़ा, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन सरकार ने जो एक्शन लिया था टैक्स बढ़ाकर,
0: एक तो उसी का है।
1: Okay, and a quick comments, it could be from for the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement.
2: It's a much needed review that was. Korea is a developed country, and we had a Comprehensive Economic Partnership Agreement, and it is important that we conclude this review as soon as possible, and make sure that our utilization levels are also strong, because where we don't do enough is utilization, but not sign this agreement.
0: भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए, मेरे और राजेश के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
2: थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, मोस्ट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
2: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
2: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
3: बहुत ही महत्व रहता है क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे और घटेंगे क्यों, अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो या जो उन लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिविजन उसमें क्या है उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, माने वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो इससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन

0: ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
0: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के हैं। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, ये सब इलेक्शन कमीशन काम है। सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है, इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न भी हो सकते। इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है उस सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन, करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है, और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है, उसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काटगड़े में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज। एक है कि भाई जो डेड है, जो डुप्लीकेट है, जो माइग्रेटेड है, इनका नाम को जरूर निकालना है, ASD वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी, उनके हिसाब से उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संवैधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति, जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में, खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी SIR के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी SIR होगा, वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है, जो जो सवाल करें सुझाव दें, सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है कि आप आर्टिकल 326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए, तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन, डालेगा तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है, हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि SIR सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर, बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। SIR सोल्यूशन नहीं है ना।

0: किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है, और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है, सिटीजनशिप एक्ट है। इनका है, एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत। लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलेमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन ने, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था। ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स, कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशन दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, टू इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस, अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है, और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है, और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूं बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था, एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में, या हिस्टोरिकल सेंस में, या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिटी था, और पॉलिटिसाइज तो था ही, तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है। और अभी मैंने जैसे कहा ना, 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है, 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में, शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया, 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया, तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को, कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो, और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें, तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है, और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छे नतीजे आया था। जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि इस SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए, कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं, जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का मुहिम अच्छी तरह हो, पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है, और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये वक्त है आपके पसंदीदा सांझ ढले का, जिसमें आप सुनते हैं वो गीत जिनकी धुनों में जादू है, बोल में अपनापन है और गीत मिश्री घोलते हुए सीधे दिल तक पहुंचते हैं। और आज का हमारा पहला गीत है साल 1956 की फिल्म चोरी चोरी से लता दी और आशाताई की आवाज में। जी सुनिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभाग के साथ और अब सुनते हैं साल 1955 की फिल्म आजाद का गीत लता दी और उषा मंगेशकर की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ और अब सुनते हैं फिल्म सीआईडी का वो गीत जिसे खास बनाती है गीत की चंचल धुन, मस्ती भरा अंदाज और ओपी नैयर साहब का अनोखा संगीत। कौन सा है वो गीत, लीजिए सुनिए।

0: शिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त, यातायात को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विस्तार सड़क 2 के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम से उत्तराखंड तक सीधा संपर्क मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को शहरी विस्तार सड़क 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे भारी वाहनों का बेहतर डायवर्जन होगा और जाम में कमी आएगी। वहीं एम्स से गुरुग्राम तक 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे धौलाकुआं और महिपालपुर क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय हरित और जाम मुक्त बनाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दिल्ली भाजपा कार्यालय पर श्री मल्होत्रा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दायित्व उनके लिए संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास में पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी को श्री मल्होत्रा के अनुभव से फायदा होगा।
4: पार्टी में हर दायित्व बड़ा होता है और ये जो दायित्व हर जी को मिला है कि उनको अनुभव बहुत है, प्रशासनिक भी है और संगठन का भी है, तो निस्संदेह उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और पार्टी को और ऊंचाइयों तक वो उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से दिल्ली में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी और जनसेवा के कार्यों को और सशक्त बना सकेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज देश की लोकतांत्रिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकलन जारी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि लोकतंत्र संवाद, बहस, सहमति और असहमति पर फलता फूलता है। इस अवसर पर 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के संकलन का विमोचन किया गया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह आने वाली पीढ़ियों और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक सार्थक मार्गदर्शक साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र वैश्विक मंच पर एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण मात्र 11 महीनों में 22 एकड़ क्षेत्र में किया गया था, जो आज भी आश्चर्य का विषय है।
5: वैसे इन्होंने एक साल में इसकी सुंदरता को, हमारे इतिहास को ये पूरा जीवित करके रख दिया। तो यहाँ पे जब बच्चे हमारे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब वो आके इस पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, हम सब आपके ऋणी हैं स्पीकर महोदय कि आपने छोटा काम नहीं किया। ये सब कहीं पे किसी कमरे में धूल मिट्टी खा रहा था, आप उसको लेकर आए, आपने उसको पढ़ा, आपने टीम लगाई और आपने इतिहासकार लगाए, उसके बाद में ये सारे इतिहास को संयोजना, उसको लेकर आना छोटा काम नहीं है, और वो भी इतने कम समय में। इसलिए हम सभी आपके प्रति ऋणी रहेंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये सदन देश की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल ही में प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री इस बात की पुष्टि करती है कि ये सदन ऐतिहासिक महत्व रखता है।
6: जो सदन है ये एक ऐतिहासिक स्थल है। जनवरी 1926 में पहली परंपरा वीर विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद जो स्थापित की, हर वर्ष वायसराय साल के पहले सिटिंग पर सदन को एड्रेस करने आते। विट्ठल भाई जी अध्यक्ष थे, उन्होंने वायसराय को मैसेज किया कि वो आने से पहले ये विचार कर ले कि जो परंपरा थी मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। परंपरा ये थी कि जब वायसराय आते थे तो अध्यक्ष जाकर नीचे बैठ जाते थे, खड़े होकर उनका स्वागत करते थे बाकी सदस्यों के साथ, और मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं इस सदन का कस्टोडियन हूं, इसलिए मंच पर एक नहीं दो कुर्सी लगेंगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुराने कचरे के बायो माइनिंग और बायो रेमिडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट पर स्थित कूड़े के विशाल पहाड़ समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुराने कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस अवसर पर छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानसिक सशक्तिकरण और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भूमिका केवल प्रशासक की ही नहीं बल्कि अभिभावक की भी होती है। उन्होंने कहा कि कई छात्राएं मासिक धर्म के दौरान असहज महसूस करती हैं और ऐसे समय में उन्हें संवेदनशीलता, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है।
7: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्वच्छ टॉयलेट, मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक शौचालय और आरोग्य मंदिर में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की नियमित मेंटेनेंस और समय पर रिफिल सुनिश्चित करने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 से 9 तक के पाठ्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद दिल्ली सरकार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी उपलब्ध कराएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी यादव।
0: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण केंद्र सरकार के निर्धारित वित्तीय ढांचे, तकनीकी दिशा निर्देशों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण और उन पर किए गए व्यय को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर सरकार ने कहा कि यह दावा गलत है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल के तहत हर केंद्र के लिए भवन सुधार पर 25 लाख रुपए और फर्नीचर तथा जरूरी सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपए तय हैं। सभी काम इसी निर्धारित बजट के भीतर किए गए हैं। विभाग ने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली में कुल 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारी

0: अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनः मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनः निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया है कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upseonline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य नमाज ईदगाह जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में अदा की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पर्व समाज में शांति, भाईचारे और करुणा की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सावरकर जी ने भारत माता के अनन्य भक्त, एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अदम्य साहस के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सर्वप्रथम के संकल्प, सांस्कृतिक गौरव और अखंड भारत की भावना को समर्पित था। उर्दू साहित्य की एक महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा है और राजधानी में आज शाम कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धरमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान पर न रहे। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में एआई पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एआई शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयला से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शन के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता, सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। मध्य प्रदेश में 4 चीतों को गुजरात में कच्छ में बन्नी घास के मैदानों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और चीता परियोजना संचालन समिति ने 2 नर और 2 मादा अफ्रीकी चीतों को स्थानांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के 2 पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ग्रीको रोमन वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल ओबेद को हराया और रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मोसिम को पराजित किया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल में ध्रुव कपिला तनिषा क्रिस्टा भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। समाचार समाप्त हुए।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency.

स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मधुरिमा में आज आपके साथ है विभा। नमस्कार। मधुरिमा में आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ ऐसे लोकप्रिय रागों की जिन्होंने फिल्म संगीत को भी अपनी मधुरता से सजाया है। और हमारा पहला गीत है राग यमन पर आधारित, जिसे हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

शाम के समय गाए जाने वाले रागों में से एक राग यमन को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है और इसी पर आधारित था ये गीत जो आपने सुना फिल्म चितचोर से हेमलता और यशोदास जी की आवाज में। और अब वक्त है एक अंतराल का, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस

मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभा के साथ। राग पहाड़ी का गायन वादन का समय भी होता है रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच। शांति, शक्ति, करुणा, मार्मिकता, अगर इन शब्दों को मिला दें तो ये राग के सौंदर्य शास्त्र की एक उपयुक्त अभिव्यक्ति का निर्माण हो जाता है। और इसी पर आधारित है हमारा आज का अगला गीत, जो कि है हमने लिया फिल्म चौदहवीं का चांद से, रफी साहब की आवाज में। लीजिए, सुनिए।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार

प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में सचिन खलप्पा शिरोल और रुद्र किरण निम्हा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन जीत दर्ज की। शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, सात्विक चिराग और ध्रुव तनिषा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला टी20 श्रृंखला आज से शुरू। पहला मुकाबला आज रात 11 बजे से कैम्सफोर्ड में।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां भारतीय अंडर 17 कुश्ती के खिलाड़ियों ने आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल ओबैद को 11-4 से हराया। वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने कोरिया के शियोक मोसिम को 8-0 से मात दी। हाल ही में अंडर 23 कैटेगरी में भारतीय टीम चैंपियन बनकर उभरी और भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में अंडर 23 में 27 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया था। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए अंडर 17 कैटेगरी में आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुश्ती प्रशंसकों को इस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद होगी। इसे चलते हैं सीधे चेस के मैदान की ओर, जहां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के राउंड 3 में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में भारतीय स्टार खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल चेस में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रज्ञानंदा ने धीरे धीरे एक लंबे गेम में कार्लसन को पीछे छोड़ दिया और ज्यादातर समय तक कंट्रोल में दिखे। हालांकि समय की भारी कमी के कारण मैच का रुख बदल गया और कार्लसन ने इसका फायदा उठाते हुए बढ़त हासिल कर ली। कुछ देर बाद नॉर्वे के स्टार ने दबाव में आकर एक बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और टूर्नामेंट लीडर अलीरेजा फिरोजा ने कड़े क्लासिकल मुकाबले में ड्रॉ खेला। फिरोजा ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की। विंसेंट किमर और वेस्ली सो के बीच बचा हुआ क्लासिकल गेम भी एक संतुलित संघर्ष के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ। वेस्ली सो ने अतिरिक्त पॉइंट्स इकट्ठा करके आर्मागेडन गेम को अपने नाम कर लिया। तीसरे राउंड के बाद फिरोजा एक और शानदार प्रदर्शन के बाद तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। नॉर्वे चेस विमेंस में एक बार फिर करीबी मुकाबले देखने को मिले। 3 क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए और फिर मैच के नतीजे का फैसला आर्मागेडन से हुआ। मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजून और झू जिनर का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। झू जिनर ने एक समय अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन वह इसे जीत में नहीं बदल पाई। झू ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। एना मुजीचूक और कोनेरू हम्पी ने भी एक संतुलित संघर्ष के बाद अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म किया। मुजीचूक ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। क्लासिकल चेस में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही और अंत में खेल ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर खेला गया, जहां दिव्या ने आर्मागेडन गेम जीत कर अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। तीसरे राउंड के बाद दिव्या और जू जिनर ने आर्मागेडन में अहम जीत हासिल करके अंतर को थोड़ा कम किया। इसके बावजूद असुबाएवा नॉर्वे चेस विमेंस में अभी भी बढ़त बनाए हुए है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
0: शतरंज की बाजियों से रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल

0: प्रवेश कर लिया। सुनते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते भारतीय खिलाड़ियों पर आज की रिपोर्ट।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि एचएस प्रणॉय कई गलतियों की वजह से बाहर हो गए। सिंधु ने 37 मिनट के भीतर जापान की रिको गुंजी को 21-9 21-12 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन से यंग से होगा। लक्ष्य ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि दूसरे वरीय कुनलावुत ने महज 2 अंक के बाद पीठ की समस्या के कारण रिटायर होने का फैसला किया। अब 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य का सामना जापान के कोकी वातानाबे से होगा। पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 1 घंटे तक चले कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे के ली झी हुई और यांग पोसुआन को 21-15 11-21 21-18 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब उनका सामना मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोन ताई से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिशा क्रास्टो भी अंतिम 8 में पहुंच गए, जिन्होंने जापान की युता वातानाबे और माया तागुची को 8-21 21-17 21-16 से मात दी। अब उनका सामना कोरिया के किम जाय हियोन जांग और हाजियोंग तथा मलेशिया के चीन तांग जिए और तो ई वेई के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। प्रणॉय आखिरी गेम में बुरी तरह पिछड़ गए और 61 मिनट तक चले मैच में घरेलू दावेदार लो किन यू से 18-21 21-16 15-21 से हार गए। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब रुख करते हैं पैरा एथलेटिक्स की ओर। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने कल पुरुषों की जैवलिन F64 कैटेगरी में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बेंगलुरु में एक शानदार थ्रो के साथ अंतिल ने पैरा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा।
2: सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 73.29 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे उन्होंने 2022 के हांगचो एशियाई पैरा गेम्स में बनाया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंतिल ने साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपना खिताब बरकरार रखा। हरियाणा की ओर से सुमित ने 74.82 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने रजत और राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ऊंची कूद के T64 कैटेगरी में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने 2 मीटर की ऊंचाई पार करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण सिंह भाटी ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 57.84 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर T47 कैटेगरी में महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने 47.64 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में हरियाणा के रिंकू ने अजीत सिंह और रवि कुमार को पछाड़ा। फील्ड स्पर्धाओं में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हनी ने 60.70 मीटर का थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में 34.04 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में गुजरात की निमिषा चकुंगल ने लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना बेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब 37.01 मीटर के साथ अपने नाम किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कई रिकॉर्ड बने और इस प्रतियोगिता में भी एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रुख कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर ने जुआन मैनुअल सेरुंडोले को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने थॉमस मचाक को हराया। महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा, आर्याना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। वहीं कल 3 बार के चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। कर लेते हैं क्रिकेट की ओर। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के

0: दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से मात देकर क्वालिफायर टू में जगह पक्की कर ली।
1: कल महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की। वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
2: स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड अगेन, ही इज पुटिंग ऑन अ शो दिस यंग मैन वैभव सूर्यवंशी। नाउ ओवर थर्ड, पुश द रोप्स बैक, स्लैम्ड अगेन, ही इज टॉयिंग विद वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आवर गेम एट द मोमेंट।
1: वैभव 15 मैचों में 65 छक्कों के साथ 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं।
2: व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ प्लेयर, वंडर किड।
1: इसके बाद कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। इसके अलावा ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी ने एक एक विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। हैदराबाद को दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेट के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी, लेकिन ईशान 11 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलिल अरोड़ा ने नीतीश रेड्डी के साथ 6 विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। नीतीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलिल ने 35 रन की पारी खेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यशराज ने 1 विकेट अपने नाम किया। वैभव को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद वैभव ने कहा कि मैं जब तक क्रीज पर रहूंगा इंटेंट दिखता रहेगा।
3: सभी कोचेज ने बोला था कि जो प्रैक्टिस में करते आ रहा है वही इस गेम में करना है, एंजॉय करना और प्रेशर नहीं लेना इस गेम का।
1: सचिन तेंदुलकर की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव ने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट से सराहना मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।
4: ये काफी अच्छा लगता है सर, मोटिवेशन मिलता है आपको और सब जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है तो हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि उनके ऐसे लेजेंड ने ट्वीट किया है, तो ऑफकोर्स खुद में प्राउड की बात है।
1: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का मजबूत बल्लेबाजी क्रम किस प्रकार गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना करता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो वैभव का सूर्योदय हो चुका है और उनके प्रदर्शन से पूरा क्रिकेट जगत जगमगाया हुआ है। और अब रुख कर लेते हैं महिला क्रिकेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे कैम्सफोर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 मई को, वहीं तीसरा मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाली महिला T20 विश्व कप में अंपायरिंग के लिए ICC ने 18 सदस्यीय महिला अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मैच रेफरी GS लक्ष्मी सहित 4 भारतीय अंपायर शामिल हैं। फुटबॉल की भारतीय अंडर 20 फुटबॉल पुरुष टीम को AFC अंडर 20 एशियाई कप चीन 2027 क्वालिफायर्स के लिए ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। ये क्वालिफायर्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक ताशकंद में होंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना

0: हरियाणा ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के

0: खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भागीदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम

0: उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे, और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए, तो ये बहुत जरूरी है। सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए, और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
0: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने

0: पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
1: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं। क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
1: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है। तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
0: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उस पर से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है, तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए, धूप रहते मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
0: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
0: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
1: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं। वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
0: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
0: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
4: Thank you.
3: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
5: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitment in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
3: The Assam Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill yesterday, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such a legislation after Uttarakhand and Gujarat. Could you please explain elaborately about the UCC and also in simpler terms talk about what the bill is all about and what does it aim to achieve?
4: As you told, that is the third state in India to enact UCC, Uniform Civil Code. Silent features of bill is all about banning polygamy. That is the first thing. Second thing is about living relationship. And third thing is about giving equal rights to the woman.
3: Right. And what is the bill aim to achieve? Can you elaborate a bit?
4: Look, in Assam, it's a bit tricky. There are a lot of tribals who are also there who follows the customary laws of their own tribe and all that. But they have been excluded from this bill. They are not under the purview of this bill. What this bill intends to do, aims to do, is getting equal rights to everybody other than tribal. There are a lot of tribal population in Assam, like Karbis, like Boros, who have been excluded from the bill. But UCC aims to give a uniform legislation to all, in a sense, rights of marriage, if you tell about rights of divorce and the rights of a woman in case of a divorce, what she gets and all that. So that UCC has brought in. It's nothing very different because in other laws, Article 44 also mandates that. But UCC, in a way, aims to give uniform level playing field to everybody other than tribals in Assam, talking about equal rights.
3: All right. What reasons has the Assam government given for introducing the UCC? And why does the Hemant Biswa Sarma government believe that such a law is necessary?
4: After BJP was in power in Assam, this is the third term, but when Hemant Biswa Sarma came into power in 2021, he was selected as a chief minister, replacing former chief minister of Assam, who was also from BJP, Sarbananda Sonowal. So he was very vocal about one thing, that Assam has a demographic change. There is a growth in population and all that. And he was very hell-bent on getting UCC in action, in the sense that if you see some communities there, there are no rules for a divorce. Then there is a polygamy which existed. That has prompted to take such legislation or bring in some legislation. In fact, BJP, before coming to power this time, they promised in their manifesto that they will get Uniform Civil Code in Assam. And it's the first state in Northeast to enact a UCC and the third state in India after Gujarat and Uttarakhand to enact a UCC. The main aim was that, which I feel, there is no law governing a certain section of society where polygamy is rampant, child marriage is rampant. That is where I think Mr. Hemant Biswa Sarma was telling from before, that if he is voted back to power, he will get UCC in Assam, and which he has done it.
3: All right. Before we proceed, let's listen to what the Prime Minister had to say about the UCC.
6: Dharmik aadhar par bane पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी. उस समय के सदस्य एएम मुंशी जी ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए. सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड.
3: The Uniform Civil Code has long been a part of BJP's election manifesto and has been repeatedly emphasized by Chief Minister Hemant Biswa Sarma in Assam. How has the BJP, especially Hemant Biswa Sarma himself, advanced the UCC issue during the recently concluded assembly polls in the state?
4: He was very open about it, and he told in all his election rallies that if BJP is voted back to power in Assam, he will legislate UCC. And I think this is the first thing which he has done. But talking about Assam, If you talk about UGC, there are also opposition from opposition parties like Congress and all that who are saying that it's just giving an access to your privacy. But I think BJP government was hell-bent on getting UGC in action in Assam after it has done in Uttarakhand and Gujarat. Also, they have a brute majority. Himanta Biswa Sarma has been voted back to power with his alliance with 102 seats in Assam out of 126 assembly seats. So he has the majority and he has done it. He was saying it from the beginning that when BJP will be voted back to power, they will bring unity, and this is the first thing he has done.
3: Absolutely. It is one thing to get a bill passed and it's another ballgame all in itself to have it implemented on ground. So what do you think are the challenges that the Biswa Sarma government
4: Look, challenges will be there. It will come basically from minority inhabited areas in Assam. As if I talk about Muslim minority, Assam is the second largest Muslim population after Uttar Pradesh. In fact, it signifies that it will be focused on not especially on minorities, but especially on Muslim minorities who follows polygamy. How Himanta Biswa Sarma takes it, because there are a lot of criminal provisions under BNS. 7 years of imprisonment for polygamy. There are a lot of provisions which have been made in that you will be jailed for 7 years if you follow polygamy. Then there is one other point that every living relationship, whether it is outside Assam or inside Assam, has to be registered. There are criminal provisions for that. There are penal provisions for that. So has to be seen that how Himanta Biswa Sarma tackles all these issues which will come now when he goes to the ground and implement the bill or implement the legislation. So there is a challenge for Himanta Biswa Sarma to make them understand on the ground is a problem, will be a challenge. And I just go back a few years back when he started a campaign against child marriage in Assam. It was quite a task. And I think somehow he could manage that. There are a lot of child marriages happening in various corners of Assam. So he was very anti against it. And he took the Kadkil and he made it happen that no, the child marriage has to stop. So whatever I have seen of Himanta Biswa Sarma, he's a go-getter, and I think he will be able to achieve what the bill intends to.
3: Right. So Abhijit, how is the Uniform Civil Code being perceived at the ground level among citizens and different communities in Assam?
4: There has not been very reaction to it as of now, other than opposition parties. I suppose the reaction will come when it really gets implemented on the ground. As of now, nothing much has come from on the ground, you know, and to make people understand about UGC and all that and the implementation of it, it takes time. And I think when the implementation really takes place on the ground, so then you get to know the reaction, what it happens. As I said, Mr. Sarma has to implement on the ground and then the reaction will come. So as of now, there is not such a reaction. Opposition parties like Congress has said that it's just a bill because all the provisions were there in other things. But they have said that they are given access to your bedroom, you know, if you talk about living in a relationship and all that. But they are also very not vocal in their protest. That signifies that the bill, when it goes to the ground, when the implementation really takes place, that time we'll come to know the reaction from the ground.
3: Right. So before moving on further, let's listen to this report by our Akashwani correspondent from Guwahati.
7: The Uniform Civil Code Bill in Assam seeks to establish a single civil legal framework for all residents of the state in matters relating to marriage, divorce, succession and living relationships. The bill excludes scheduled tribes from its purview in order to preserve constitutional protections and customary practices while replacing religion-based personal laws with a common framework aimed at ensuring equality and gender justice. Under the marriage provision, the bill mandates monogamy and prescribes a uniform legal age of 21 years for grooms and 18 years for brides. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
3: Abhijit, in your view, what is the broader significance of the UGC in terms of ensuring equality and equal treatment for all citizens, irrespective of their religion?
4: We have a lot of tribal councils, you know, who are excluded from the bill. So if you talk about equality in Assam, certain sections are already excluded from that, and which opposition is crying foul. They're saying that why tribals could not be a part of this bill, why they are excluded. If you talk about equality in terms of child marriage, in terms of polygamy, treated marriage without divorce, so that is there. And I think it empowers women irrespective of caste and creed in across some. But again, there is a school of thought that why tribal people are excluded from that bill, why they are not included in the bill. So if you talk about equality, I think the bill will bring in gender parity. That is very much necessary. The second thing is that when you talk about marriages outside institutional realm, I think that will come into the fore now. Every marriage has to be registered. Every even relationship has to be registered. If there is an offspring from a real relationship, if somebody is born out of a relationship, what is

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो

0: इंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरामैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल ओबैद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने शियोक मो सिम को हराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency today. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the border security force within a week.
3: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
4: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
2: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. So longest-serving Chief Minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation to the Governor's office in Bengaluru today after a breakfast meeting with his cabinet colleagues.

0: के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद में श्री अल्बनीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज में योगदान और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। आज सिंगापुर में आयोजित 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता के दौरान भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे। वार्ता के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग ने मौजूदा रक्षा समझौतों की समीक्षा की। उन्होंने रक्षा सहयोग, सैन्य गतिविधियों, रक्षा उद्योग सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा, मानव रहित प्रणालियों और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे विशिष्ट और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने एक खुली, समावेशी और नियम आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का समर्थन करने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यावहारिक और रचनात्मक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने कहा है कि उन्होंने आज सुबह अमरीकी सेना द्वारा देश के दक्षिणी हिस्से पर किए गए हालिया हमलों के जवाब में एक अमरीकी हड्डे पर हमला किया है। आईआरजीसी ने कहा कि बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में हुए अमरीकी हमलों का स्रोत अमरीका की वायुसेना ही थी। उसने कहा कि तेहरान की यह नवीनतम कार्रवाई अमरीका के लिए गंभीर चेतावनी है और उसकी आक्रामकता का जवाब जरूर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: यह घटना बुधवार रात को अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए नए हमलों के बाद हुई है, जिसे अमेरिका ने अपनी सेना के लिए खतरा बताया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि उसकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ईरान जब 5वें ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था, तब अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास स्थित ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में धमाकों की सूचना दी। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ये हमले सैन्य झड़पों की एक श्रृंखला में नवीनतम कड़ी हैं। इन हमलों ने दोनों देशों के बीच नाजुक संघर्ष विराम को तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं 3 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है। इस संघर्ष ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों को बुरी तरह से बाधित कर दिया है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बढ़ा दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: कुवैत सेना के जनरल स्टाफ के अनुसार कुवैत की वायुसेना शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। सेना ने बताया कि देश पर हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों में हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा आसमान में ही ध्वस्त करने के कारण वहां के निवासियों को धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अधिकारियों ने लोगों से प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सलाहकार पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जर्मन अखबार को गुप्त जानकारी लीक करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। ये जानकारी इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने दी। इससे इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों से पहले नेतन्याहू के लिए एक और विवाद खड़ा हो गया है। नेतन्याहू पर पहले से ही भ्रष्टाचार के 3 मामलों में मुकदमा चल रहा है। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शन लोकयान 26 अभियान के अंतर्गत अटलांटिक महासागर पार करने के बाद कल एंटीगुआ पहुंचा। एंटीगुआ और बारबुडा में भारत के महावाणिज्य दूत विजय तिवारी और एंटीगुआ तथा बारबुडा रक्षा बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर टेलबर्ट बेंजामिन ने INS सुदर्शनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह ऐतिहासिक यात्रा INS सुदर्शनी के अटलांटिक महासागर को पार करने का पहला प्रयास है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग शनिवार से भारत के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली यात्रा है। भारत यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स्ड डबल जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जुआन मैनुअल सेरुंडोलो ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर को हरा दिया। सेरुंडोलो के खिलाफ अपने दूसरे राउंड के मैच में सिनर को शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्हें 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 से हार मिली। जर्मनी के दूसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने दूसरे राउंड में चेक गणराज्य के टॉमस माचाक पर आसान जीत दर्ज करते हुए अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर अपना सफर जारी रखा। महिला सिंगल्स में दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने क्रोएशिया की डोना वेकिच को 7-6, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में जगह बनाई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समीह अहमद अल ओबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने शियोक मोसिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। बांग्लादेश में आज ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक उत्साह, श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी ढाका में ईद की नमाज ईदगाह में अदा की गई। उधर श्रीलंका में ईद उल अजहा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की। ये त्यौहार वार्षिक हज यात्रा का भी प्रतीक है जो कल सऊदी अरब के मक्का में सम्पन्न हुई। ये त्यौहार आस्था, विनम्रता और निस्वार्थता के मूल्यों को रेखांकित करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस में यूरोपीय संघ के देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। पश्चिम एशिया की स्थिति और आपसी हितों के मुद्दों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, संस्कृति, शिक्षा, क्रिकेट और व्यापार के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम पर तनाव बढ़ा। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य के पास नए हमले किए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और फ्रेंच ओपन टेनिस में बड़ा उलटफेर। जुआन मैनुअल सेरुंडोलो ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में विश्व नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम नवनीता अधिकारी विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets his counterparts from European Union countries in Cyprus, discusses West Asia situation and issues of shared interest. Australian Prime Minister Anthony Albanese says ties between India and Australia continue to deepen through culture, education, trade and cricket. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near Strait of Hormuz. Indian shuttlers PV Sindhu and Lakshya Sen advance to singles quarterfinals of Singapore Open Badminton. And in a major upset in French Open tennis, Juan Manuel Serrolondolo beats world number one Jannik Sinner in men's singles second round. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today attended the working session of the informal meeting of EU Ministers of Foreign Affairs, CIMNIC, in Cyprus. External Affairs Ministry said the discussions focused on relevant policy issues of shared interest, in particular the geopolitical impact of developments in the West Asia and the wider region. On the sidelines of CIMNIC meeting, Dr. Jayashankar held structured bilateral meetings with Foreign Affairs Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, Foreign Affairs of Ukraine, Andriy Sibiha and Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain, José Manuel Álvarez Bueno. The ministry said these meetings and his interactions with other European Union ministers provided as opportunity to exchange perspectives on West Asia, the Ukraine conflict, India-EU cooperation, bilateral relations and wider regional developments. Dr. Jaishankar also called on President of Cyprus Nikos Christodoulidos in Nicosia. The discussions reviewed the strong momentum in India-Cyprus relations following the landmark state visit of President Christodoulidos to India last week, during which the two countries elevated bilateral ties to a strategic partnership. They also discussed further strengthening cooperation in areas including trade, investment, connectivity, defence and security, technology, innovation and people-to-people ties. India and Singapore today explored new avenues to strengthen strategic ties during 16th India-Singapore Defence Policy Dialogue in Singapore. During the dialogue, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and Defence Secretary of Singapore, Joseph Leong, reviewed the progress of ongoing defence engagements. They held wide-ranging discussions on key areas of defence cooperation, military engagements, defence industry collaboration, capacity building and regional security issues. The Ministry of Defence said that the two countries also discussed enhancing cooperation in niche and emerging domains such as cyber security, artificial intelligence, maritime security, unmanned systems and advanced defence technologies. The discussions also underscored the importance of innovation-driven partnerships and deeper collaboration in emerging areas to address evolving regional and global security challenges. The ministry said that both countries reiterated their commitment to supporting an open, inclusive and rule-based regional security architecture while promoting practical and constructive defence cooperation in the Indo-Pacific region. Australian Prime Minister Anthony Albanese today said the ties between India and Australia continue to deepen through culture, education, cricket and trade, and that he looks forward to hosting Prime Minister Narendra Modi in the near future. In his address at the Australian Parliament, Mr. Albanese highlighted India's economic growth and emphasised that the trade relationship between the two nations has been further enhanced by the Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA. He said India has the largest population in the world, but it will also grow to be the third largest economy in the world over this decade.
3: India has the largest population in the world, but it will also grow to be the third largest economy in the world over this decade. That is an extraordinary opportunity for us in our region. We are a Pacific nation. We are also an Indian Ocean nation as well. So I'll have the privilege of hosting Prime Minister Modi here soon. I look forward to repeating for the second time. Like last time, Prime Minister Modi's visit will be made extraordinary by so many of the million-strong Indian-Australian community, the largest growing migrant community in Australia.
2: Mr. Albanese lauded the Indian community's contribution to Australian society and how they have strengthened ties between the two nations. He expressed the Australian government's commitment to supporting Indians and their interests. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Janez Janša on being elected as the Prime Minister of Slovenia. In a social media post, Mr. Modi said he is looking forward to working closely with the Slovenian Prime Minister to further strengthen bilateral ties for the shared prosperity and mutual benefit of the people of both countries. This is Akashwani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The latest escalation has dealt a setback to ongoing diplomatic efforts between Washington and Tehran to extend the existing truce. More from our West Asia correspondent.
4: The U.S.-Iran ceasefire, already under severe strain, has effectively collapsed into direct military confrontation near the Strait of Hormuz. American forces shot down 4 Iranian attack drones targeting commercial shipping and destroyed a launch site in Bandar Abbas that was seconds away from firing a 5th, as reported by the United States Central Command. Iran's Revolutionary Guard Corps responded by claiming strikes on a U.S. military base. Kuwait's air defenses have also been active, intercepting hostile missile and drone threats. Meanwhile, the crisis is rippling outward. In Lebanon, the Israeli military has issued its largest

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। फिर वही मीठी शाम की दस्तक, फिर वही दिन से रात का मिलन, फिर वही गीतों का सफर, फिर वही मेरा सतरंगी शहर और इनके साथ फिर वही मैं कुसुम। फुर्सत मिले तो दिल की धड़कनों को सुनना, हर एक दिल की पुकारों में जन्मों का प्यार छुपा होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है ये गीत जो हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

100 साल पहले ऐसी ही एक रात थी और रात के स्याह आंचल पर लिखा था कोई मोहब्बत का अफसाना। वो हर्फ अब सितारे बन गए हैं। देखो आज भी सितारों में लिपट कर आती है रात, पलकों पर ख्वाबों की महफिल सजाती है रात। सुकूने दिल सुकूने जहां है रात की ये तन्हाई, स्याह आंचल में जिंदगी समेट कर लाती है रात। ये रात हमें याद दिलाती है वो सब जो हम दिन के उजालों में भूल जाते हैं। याद दिलाती है किसी का प्यार, किसी का इंतजार, किसी का चेहरा, किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत, और फिर दिल चुपके चुपके गुनगुनाने लगता है ये गीत।

यानी मिलन की खुशी ही नहीं महकती बल्कि जुदाई के गम भी सी सकते हैं। ये सफर आसान राहों सा नहीं होता बल्कि उतार चढ़ाव से भरी पगडंडियों जैसा होता है। दरअसल मोहब्बत की एक फितरत होती है, ये गुलाब की तरह कांटों में खिला करती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अहले दिल जो भी बात कहते हैं, कोई राज़े हयात कहते हैं, हाय वो दौरे इश्क जब आंसू दास्तानी हयात कहते हैं। जी हाँ, मोहब्बत के सफर में जुदाई का मौसम भी आता है, और जब ये मौसम आता है ना तो दिल से एक कसक सी उठती है और ये नैना सावन भादों बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है फिल्म महबूबा का ये गीत। आइए सुनें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं हर सिंगार मेरे यानी कुसुम के साथ। 28 मई की ये रात यूं लगता है कि दिन भर के अपने ताने बाने को समेट रही है। आप भी जिंदगी की उलझने सुलझा रहे होंगे, है ना। ये जिंदगी भी ना रोज एक सुंदर सपने की तरह आती है और शाम ढले मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाती है। हम बस देखते ही रह जाते हैं। गुलजार साहब लिखते हैं कि कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। कहीं पर वो ये भी लिखते हैं कि जिंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते घर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह। साथ ही जिंदगी से गुजारिश करते हुए गुलजार साहब ये भी लिखते हैं कि ऐ जिंदगी गले लगा ले। फिल्म सदमा का ये गीत आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर की आवाज में।

ऐ जिंदगी गले लगा ले और आसान कर दे सारी मुश्किलों को। काश ऐसा होता है ना। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। जिंदगी चाहती है एक दायरे में बहना, लेकिन ये जो दिल है ना, ये उन दायरों को, उन सीमाओं को तोड़ देना चाहता है। वो एक अनजानी सी प्यास, अनजानी आस के पीछे भागता जाता है, भागता जाता है। वो चाहता है वो सब कुछ पा लेना जो कहीं ना कहीं हमारी पहुंच से परे है। जिंदगी के इस फलसफे को फिल्म रजनीगंधा में गीतकार योगेश बड़ी ही खूबसूरती से बुनते हैं। आइए सुनें।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:10 पर गीत मेरे मन मीत लेकर मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल आइए जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार

वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत के सफर पर आज मैं हूँ आपके साथ कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

फिल्म मन की आंखें का ये गीत आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म कुदरत का गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में। साथियों, जाने वाले कभी कभी लौट कर नहीं आते। आज मशहूर शायर बशीर बद्र साहब ने इस फानी दुनिया से रुखसती ले ली। उनके जाने से दिल की धड़कनों के गीत मानो खामोश हो गए हैं। वो भले चले गए, लेकिन वो अपने शेरों में हमेशा गुनगुनाए जाएंगे। जब भी उनके शेर कहीं कोई भी पढ़ेगा तो वो हर कहीं बोल पड़ेंगे। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसके अलावा बशीर बद्र लिखते हैं कि मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होठ रख देना, मैं जब सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। आइए उनकी याद में सुनते हैं फिल्म ममता का ये गीत।

फिल्म लैला मजनू का ये गीत आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अगला गीत लिया है हमने फिल्म दिल एक मंदिर से, लता मंगेशकर की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

प्यार में सारा आलम खोना एक तरफ और प्यार को निभाना दूसरी तरफ। इसीलिए तो शायद बशीर बद्र साहब ने लिखा होगा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हाँ, मगर मिला करो, है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये रात, ये जिंदगी गुजर जाए और बातें अधूरी ही रह जाए। कुछ ऐसा ही कह रहा है ये अगला गीत फिल्म नवरंग का।

फिल्म ठोकर का ये गीत आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। इससे पहले आपने सुना फिल्म अभिमान का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये प्यार भी अजीब शय है ना, लोग जिंदगी हार जाते हैं। बशीर बद्र साहब ने क्या खूब लिखा कि दुआ करो कि मैं एक उम्र तक उसे चाहूं, वो जिंदगी जो मेरे नाम उसने की है अभी। अगला गीत लिया है हमने फिल्म धरती कहे पुकार से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जयती आ चुकी हैं आगे का कार्यक्रम लेकर, कुसुम को दीजिए इजाजत। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस

0: भारत के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Union Home and Corporation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week.
2: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The Demographic Change Committee will submit its report within 1 year and we will work towards preventing artificial demographic changes.
3: Demographic change jo hai, usko rokne ka hum kaam karenge.
1: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. Prime Minister Narendra Modi yesterday met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation in the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming DK Shivakumar, he asked the governor to invite the CM-designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. The governor, who is on tour, has to return to decide on the resignation submitted by Siddaramaiah. Eid ul-Azha, the festival of sacrifice, was celebrated with religious fervour and due reverence across the country yesterday. The devotees offered Eid prayers in Eidgahs and mosques in the morning. Later, they exchanged Eid greetings. In Delhi, main Eid prayer congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Hazrat Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत और इंसानी रिश्तों की नरमी का एक पूरा दौर हमसे विदा हो गया। पद्मश्री बशीर बद्र साहब ने उर्दू गजल को महफिलों से निकालकर आम दिलों की धड़कन बना दिया। उनके अल्फाज में ऐसी सादगी थी जो सीधे रूह तक उतर जाती थी। उन्होंने टूटन को भी इतनी खूबसूरती से लिखा कि दर्द इबादत सा लगने लगा। मुशायरों की वह गरमामयी आवाज, वह लहजा, वह अपनापन अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। उनकी शायरी ने पीढ़ियों को प्रेम, संवेदना और रिश्तों की अहमियत सिखाई। आज अदब का आकाश कुछ और सूना है, मगर उनके अशार हमेशा रोशनी की तरह हमारे बीच रहेंगे। बशीर बद्र साहब को आकाशवाणी की तरफ से, हमारे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उर्दू साहित्य का ये सितारा कभी भुलाया नहीं जा सकता।

कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी जवाब कम निकले, हमारे हिस्से में भी जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। वो कह न पाए वही उम्र भर कसक बनकर, जो कह न पाए वही उम्र भर कसक बनकर, लबों से कम मेरी चुप आंखों से गम निकले, मेरी चुप आंखों से गम निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, मेरे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले, मेरे हिस्से में भी जवाब कुछ कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है मेरा साया।

सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना, अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना, सुनो फिर मिलना, जो रह गया हिसाब बाकी, फिर मिलना, पूरी करनी है हर मुराद, फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, न लाना बीच में काश, सुनो फिर मिलना, फिर मिलना, अगली बार अगले जन्म, सुनो फिर मिलना। और अगला गीत फिल्म मौसम से, आवाज है भूपिंदर की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी @90

साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था।

0: तुम अचानक उजाला बनकर आ गई। मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
1: अनिल, वो देखो, सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काजल, आवाज है आशा भोसले की।

यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। अरब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चरस, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है राजा और रंक और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। अगला गीत, फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की।
1: देखिए, हमारा 5-स्टार होटल है। यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा था ये, जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
2: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, आज तक हमारा एक भी भांगड़ा या फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
1: नाम तो मैंने भी सुना है।
3: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
1: गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, ये मेरी बेटी है सोना।
2: ओह आई सी।
1: हमारे ट्रिप के हर तरह के प्रोग्राम को यही लीड करती है।
2: ओह प्लीज सिट डाउन विद सोना।
0: शुक्रिया।
2: चाय?
0: जी नहीं शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती। मैनेजर साहब, आप हमें सिर्फ एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसके बाद देखिए आप हमें पूरा सीजन नहीं जाने देंगे, ठीक है ना बाबा?
2: ओके धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एतबार, आवाज है आशा भोसले और भूपिंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था। कहीं तो होगा, गुजर गया तो अब कहाँ है। कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है। ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। और अब आइए सुनते हैं एक गजल, आवाज है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पर ये बताना हम नहीं भूल सकते कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमरीका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय समय हुआ है रात्रि के 3:10। मैं पंकज आपके साथ इस शांत रात में, लेकिन अब शुरू होता है हमारा ही शो और इसमें आपके लिए मैं पूरे घंटे प्ले करूंगा ड्यूएट्स गाने। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और फिर इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं।

अप्रिशिएट करते हैं और हो भी क्यों ना, आखिर अपने गानों से इन्होंने कमाल जो कर दिया है। हमराही शो की इस आधी रात में आपने बेताब मूवी का गाना सुना, शब्बीर कुमार और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके लिए इस पूरे घंटे प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने, यानी बॉलीवुड के गोल्डन एरा के पुराने गानों का मजा लेंगे मैं और आप। तो अपने दिन की सारी बेकार की बातों को भूल जाइए जिन्होंने आपको टेंशन में रखा, थका कर रखा, और बस आप इन गानों का मजा लीजिए और मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो मैं बातें आपसे करूंगा और आपके लिए जो गाने मैं प्ले करूंगा बस। और तो हाँ, बस इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। बाकी मैं सोच लूँ और कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगेंगे, वो गाने आपके लिए मैं निकाल लेता हूँ। अभी के लिए सुनिए मैंने प्यार किया मूवी का ये गाना आपके लिए मेरी तरफ से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आंगन की गली फिल्म से ये गाना था, और जितनी अच्छी ये पुराने गाने हैं उतनी अच्छी ये पुरानी फिल्में भी हैं। और मेरा तो हमेशा एक से एक सीन रहता है कि फ्राइडे रात को या फिर सैटरडे रात को जो है आराम से अपना सारे काम खत्म करके उसके बाद फिर कोई पुरानी मूवी ऑनलाइन देखना, और सच में बहुत मजा आता है। 2-3 घंटे तो इतने प्यार से बीत जाते पता ही नहीं चलता। खैर, मैं हूं पंकज आपके साथ हमराही शो में। और जब ये गाना चल रहा था ना कि सैया बिना घर सूना, मुझे ऐसा लगता है रिश्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते ना और उस समय कोई अगर आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए तो सच मानिए उस हाथ को ना थाम लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, रिश्ते बहुत मिल जाएंगे लेकिन रिश्तों में प्यार मिलेगा या नहीं, ये मुद्दे की बात है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और अगर आपको प्यार मिले तो खुद को खुश नसीबों में गिन लीजिए।

यावान फिल्म का गाना आपने सुना पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, अजीज कैसी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये गाना चल रहा था, एक बात सोच रहा था कि आज रिश्ते नाते जो हैं वो तिनकों की तरह बिखर रहे हैं और जाने मन में बसा प्रेम जो है वो लोगों के कहां खो गया है। अहंकार जो है संबंधों में दीमक का एक तरह से काम करता है और वैसे भी रिश्ते नाते में कहते हैं ना कि जो सह गया वो रह गया। हर बात पर रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं होता क्योंकि कुछ खट्टी बातें ना सिर्फ मन को कुछ देर परेशान करने के लिए लोग कह जाते हैं। उनका उद्देश्य आपको खोना नहीं होता बल्कि समझाना होता है कि भाई जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझो। हाँ, तरीका थोड़ा तल्ख हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, कहते ना कि हर बात में मुंह बना लेना जरूरी नहीं है। हमराही शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और जब भी कभी आपको अपने साथी पर तैश आए ना तो ये भी जरूर सोचिएगा कि यही इंसान है जिसने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ भी किया है। तो बाकी आप जो है ऐसे ही आप गाने सुनते रहिए। और हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले घंटे सुबह 4:10 पर हमरा ही शो का जो ये है ये आखिरी गाना है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा सुबह 4:10 पर अरुणिमा शो में। तो अभी के लिए आप इस गाने का वो एंजॉय करिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी बस ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वे कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थंगडी स्थित सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र को भी संबोधित करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक

0: जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूं आपके साथ और अब शुरू होता है हर सुबह की तरह अरुणिमा कार्यक्रम। और अब मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गाने के साथ।

जगजीत सिंह जी की आवाज में ये सुकून देने वाली गजल आपने सुनी और फ्रॉम द एल्बम तुम तो नहीं हो, इसे लिखा था बशीर बद्र साहब ने। इस गजल की एक लाइन जो है मेरे दिल को बहुत ज्यादा छूती है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है। हाय, और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने बशीर बद्र जी की लिखी हुई इस गजल की दो लाइनों को क्यों कहा। कल यानी 28 मई 2026 को भारतीय शायर बशीर बद्र जी ने दुनिया से विदा ले ली। एफएम गोल्ड पर भी आपने आज उनके बारे में बातें सुनी, उनकी लिखी हुई गजलें सुनी और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। वैसे तो देखिए, जीवन का एक दिन समापन होना ही है हम सबका, और कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई अचानक जाता है, लेकिन जब ऐसे शायर संसार से रुखसती करते हैं तो मलाल तो होता ही है। एक से बढ़कर एक गजलें लिखी बशीर बद्र जी ने। 91 साल की एज में बशीर बद्र जी जो है डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने फिर कल अपने घर पर अंतिम सांस ली। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज आपके साथ अरुणिमा शो सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी परिवार भी बशीर बद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी लिखी हुई गजल की ये लाइन भी मुझे बहुत गजब की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जुबान सब समझते हैं जज्बात की। खैर, और अब बशीर जी की लिखी हुई इस गजल का लुत्फ लीजिए तलत अजीज जी की आवाज में, और इस गजल के बाद फिर उसके बाद आप एक गाना सुनेंगे। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ सिर्फ अरुणिमा शो में।

रूप तेना मस्ताना मूवी से ये गाना था। किशोर दा और लता जी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। सबको पता ही है कि कल यानी 28 मई को मशहूर और हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र जी हमारे बीच नहीं रहे और मैंने भी आपके साथ उन्हें अभी याद किया। आप सुन रहे हैं अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। बशीर बद्र जी की लिखी हुई हर गजल जो है वो बहुत शानदार और अपने आप में मायने लिए हुए है। एक गजल है ना आपको उन्हीं की लिखी हुई सुनाता हूं जिसका टाइटल है यूं ही बेसबब ना फिरा करो। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनके, बहुत अच्छी है, बहुत डीप मीनिंग्स हैं इसके। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो, मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, कभी हुस्ने पर्दा नशी भी हूं जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन संवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो, ये खिजां की जर्द सी शाम में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है इसे आंसुओं से हरा करो, नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर नहीं, उसे इतनी गर्मी है शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। कौन ना फिदा हो जाए इस पर। और मुझे तो सबसे बहुत प्यारी जो मुझे लाइनें लगी वो तो ये थी कि मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, कहाँ सुन पाते हैं लोग दिल की बातें। खैर अब सुनिए विशाल भारद्वाज की आवाज़ में ये गाना, इसे जो है बशीर बद्र जी ने लिखा था, तो आप सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और

भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मचा।
1: हाँ।

जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा वैसे मैंने आपसे शायद पिछले घंटे आपसे बात की थी कि पता नहीं मैं आज कौन सी मूवी देखने वाला हूँ ऑनलाइन फ्राइडे, तो अभी तक तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अजनबी 1974 में रिलीज हुई इसी मूवी को आज रात में देखूंगा। आज या तो आज रात को देखूंगा टाइम मिला तो, बाकी कल देखूंगा। पुरानी फिल्मों का जादू सच में एक अलग ही होता है। और ये इस गाने में आपने देखा कि जीनत अमान जी जो है वो कितनी बला की खूबसूरत लग रही है। खैर मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है अरुणमा। जीवन जो है सुख दुख का संगम है, और सुख का मजा भी थोड़ी कठिनाई झेलने के बाद ही आता है, जैसे तेज गर्मी के बाद बारिश का। वैसे भी दिल्ली में जो है थोड़ा सा मौसम, हल्का सा मौसम जो है ठंडा हुआ है अभी तो, थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर डेज आज थोड़ा सा हल्का, मतलब थोड़ा सा ठंडा है। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, आप ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, मैं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में ये गाना था। एसडी बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य जो होता है हमारे तन और मन की खुशी होती है। हम गाने भी मन को खुश करने के लिए सुनते हैं और मन खुश तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैसे इस समय बाहर की ताजी हवा से भी हमारा शरीर जो अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप घर की खिड़की या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो विंडो ओपन करके आप बाहर की ताजी हवा का मजा ले सकते हैं। वैसे भी आज मौसम जो है थोड़ा सा भी ठीक हुआ है, हल्का सा ठंडा हुआ है। बाकी अगला शो भोर सुहानी होगा यानी सुबह 5:10 पर, और इन गानों के बाद हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगा 5:10 पर। अभी के लिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के अरुणिमा शो का ये लास्ट गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के

0: बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132.9 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हांगकांग में 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "The dedication to the tribal community is truly commendable.

जिंदगी में जब कोई पसंदीदा शख्स आ जाए ना, तो मानो जैसे घुटन से भरे कमरे में ठंडी ताजी हवा आ गई हो, ऐसा होता है प्रेम का जादू। वैसे गानों का मैजिक भी मूड बदलने का काम करता ही है। और ये गाना था फ्रॉम द मूवी किसी से ना कहना, आशा जी की आवाज में। और पता है, आपने कभी नोट किया होगा कि सुबह सुबह जो गाना आप सुनेंगे ना, पूरा दिन आप वही गुनगुनाएंगे, और अगर नहीं भी गुनगुनाएंगे ना, अंदर ही अंदर वो गाना तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसे गा नहीं लेंगे। ऐसा होता है। खैर, सुबह हो गई है, भोर सुहानी शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। सुबह के 5:22 हो चुके हैं और मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ आसमान जो है काफी, मतलब अब तो काफी विजिबल हो जाता है गर्मी में तो। अब उफ, गर्मी तो खैर बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, लेकिन अभी जो है, अभी प्रेजेंट में मौसम जो है थोड़ा ठीक है, इसलिए आप जब भी दिन में बाहर निकलें तो अपने साथ ठंडा पानी या नींबू पानी पीते रहने के लिए जरूर ले जाएं। और आपके लिए मेरे पास बर्फ से ठंडे गाने जिन्हें सुनकर आपको ठंडक मिलेगी। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। ऐसे सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।